ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 21, तदनुसार 12 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्प्टन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

अयोध्यापुरी में श्रीराम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी। ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार थे रविंद्र साठे और उनके साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101

107 MHz पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में सुनवाते हैं ये पहली भक्ति रचना हरिओम शरण के स्वरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना, और अब सुनवाते हैं हरिओम शरण और साथियों के स्वरों में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना, और इसी भक्ति रचना के साथ ही आज का कार्यक्रम समर्पण अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में मृणालिनी अखौरी को। प्रातः 7 का समय होगा कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। प्रातः 8 समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार प्रातः 8:15 पर। प्रातः 8:30 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रातः 8:40 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक में, हो लोकगीत कलाकार जगबंधु बारी एवं साथियों की आवाजों में। प्रातः 9 का समय होगा हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। प्रातः 10 हम सुनवाएंगे आपको फिल्म संगीत। प्रातः 10:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 1:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। दोपहर 2:55 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 3 आप सुनेंगे न्यूज़ इंडिया समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 3:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 4:02 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 5 मुख्य समाचार का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 5:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विवरण। संध्या 5:05 पर समय होगा कार्यक्रम जय भारती फौजी भाइयों को संबोधित। संध्या 5:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7, और उसके बाद जिले में आजकल। संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8 समय होगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनी गंधा का। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 9। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11 हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनवा रहे हैं। ये संगीत आज के कलाकार हैं मृणालिनी अखौरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मृणालिनी अखौरी को कार्यक्रम सुगम संगीत में। आज का कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत में मृणालिनी अखौरी को। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM की 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनवाते हैं ये पहला गीत यशुदास और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है त्रिशूल

कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ

के जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे हाँ आ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे आत्मलोगे रूठ के

0: गए हम, कुछ कहो भी हमसे, लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे, बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फ़िल्म तुमसा नहीं देखा का, क्षमा कीजिएगा, तुमसे अच्छा कौन है का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनवाते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में फ़िल्म उजाला का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आदमी और इंसान का ये गीत, आवाज़ महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। और अब सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म आदमी का ये गाना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आग और शोला का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले पड़ा परिवार जो तो बनवा इन मेरे बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब पड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि आम बोले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हुए ही नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घरे बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
8: तुम लोग बुरंग सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा ऐसा करना ऐसा दुकुरे में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
9: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मैंने मैं उड़ीड़ी ने बागिया तोड़ के ये दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमें दुर्गम कोई यहाँ तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम जोहार चाईबासा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवा रहे हैं फिल्म आज और कल का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, बोल साहिर के और संगीत रवि का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म आंधी का ये गीत, बोल गुलजार के और संगीत आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आर पार का ये गीत, आवाज़ समसाद बेगम की, संगीतकार ओपी नैयर। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, और अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को फिल्म आशा में। बोल आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मन्ना डे के स्वर में फिल्म आशीर्वाद का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम जोहार चाय बासा अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाईबासा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया।

0: 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमरीका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमरीका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरि के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15

0: भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. U.S. launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
1: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi's three-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and people-to-people exchanges, among others. Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hun has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hun has asked authorities to identify shortcomings, determine causes of the accident, and implement corrective measures to prevent similar incidents in the future. The Vietnamese Prime Minister has also

0: रेल मंत्रालय ने गढ़वा से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 9000 करोड़ की लागत से रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियां। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को पद सृजित कर नियमित करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने राज्य में 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट, बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद। और रांची के सरला बिरला स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में नन्हे प्रतिभागी कर रहे शानदार खेल का प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने झारखंड के गढ़वा जिले से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 261 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से झारखंड और छत्तीसगढ़ रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि स्थानीय लोगों के कुछ मांगे हैं जिसे रेलवे मंत्री के समक्ष रखा जाएगा।
1: प्रतिनिधिमंडल का कहना यह था कि बड़गढ़ बंडरिया होकर के रेल लाइन को गुजरना चाहिए। संबंध में मैंने उन्हें बताया कि जो पुराने रेल लाइन का अलाइनमेंट था उसमें गाड़ी का स्पीड 89 किलोमीटर ही रहेगा, जबकि ये रेल लाइन जो बन रही है उस पर गाड़ी की स्पीड 130 किलोमीटर होगा। पुराने अलाइनमेंट पर रेल निकलना संभव नहीं है, इसलिए नया अलाइनमेंट स्पीड के दृष्टिकोण से दिया गया है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 3,51,000 से अधिक नियमित पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 1,87,610 पदों पर ही कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार विभागों की रिक्तियां को भरने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
2: हेमंत सोरेन जी की ही सरकार है जहां रिक्तियों को भरने की दिशा में बहुत तेज गति से कार्रवाई की जा रही है, और मैं अनुमान करता हूं कि इनके कार्यकाल में लगभग 40,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, इससे अधिक भी हो सकती। सरकार की इच्छा है कि ये जो 5 वर्षों का कालखंड है यानी कि 2029 तक अधिक से अधिक राज्य के युवाओं को जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें अवसर दिया जाए ताकि वो सरकारी पदों पर नियुक्त किए जा सके।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने मनरेगा में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के हित में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए स्वीकृत पद सृजित कर उन्हें उन पदों पर समायोजित करें। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दे चुके कर्मियों को आउटसोर्सिंग में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन 30 जुलाई तक पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। गठित समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। नई समिति में अभिभावकों की प्रमुख भूमिका होगी। समिति में 50% महिला सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि इससे विद्यालयों के संचालन, निगरानी और सामुदायिक सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने का लक्ष्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा से संबंधित जिलों के लिए जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGID 2025-26 में चतरा जिले ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए विशेष प्रयास श्रेणी 2 में 256वां रैंक प्राप्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यह वरीयता सूची बच्चों में सीखने का अवसर, शिक्षा की पहुंच, आधारभूत सुविधा और संरचनाएं, समानता एवं प्रशासनिक दक्षता, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण जैसे विषयों का आकलन का तैयार किया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@eirnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@eirnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन

0: रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 14 जुलाई को बीएलओ बीएलए 2 की संयुक्त बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान अनमैप्ड मतदाताओं पर भी चर्चा होगी तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सभी पात्र नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की बीएलओ जमीला बीबी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान पैसे मांगने का आरोप था। जिले के उपायुक्त पीएन मिश्रा ने बताया कि बीएलओ जमीला बीबी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पैसे न देने पर नागरिकता रद्द करने की धमकी दी थी।
1: बीएलओ उन्होंने कुछ लोगों से पैसा मांगा है और पैसा लिया भी। उक्त के आलोक में मैंने तत्काल प्रभाव से उस बीएलओ को वहां से जो इनोग्रेशन फॉर्म और एसआईआर की प्रक्रिया होनी थी उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है उन्हें, और साथ ही जो मूल उनका काम था आंगनवाड़ी सेविका के रूप में वहां से भी चयन मुक्त करने का निर्देश मैंने डीडीसी को दे दिया है।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार लोगों को सोलर आधारित बिजली पैनल लगाने पर विभिन्न श्रेणियों में अनुदान दे रही है। साहिबगंज के विद्युत कार्यपालक अभियंता शंभू चौधरी ने बताया कि जिनके घर में बिजली की खपत ज्यादा है उनके लिए यह योजना लाभदायक है और इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगाते हैं और सोलर लगाने के बाद उनका कंजम्पशन 200 यूनिट से कम जाता है, तब तो 100% उनका बिल फ्री हो जाएगा। 100% फ्री नहीं भी होता है तो जितना यूनिट वो सोलर से जनरेट करेंगे वो एक तरह से मुफ्त होगा।
0: झारखंड में अगले सप्ताह मॉनसून के और अधिक सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 और 15 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश से वर्षा की कमी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 के 9वें राउंड के ओपन मुकाबले में व्यांश ने अमांश को, सिद्धार्थ ने रियांश को, रयान ने तक्षांत को और निखिल ने जिनसन को हराया, जबकि जोहान और तमीज के बीच का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दूसरी ओर गर्ल्स मुकाबलों में नंदी प्रीतिका ने अर्पिता को, अंशिता ने अर्षिता को और पुनीता ने पविष्णा को पराजित किया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मनरेगा कर्मियों को नियमित करने के हाईकोर्ट के आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने वियतनाम में स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीयों की मौत की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बहरागोड़ा में करोड़ों का पन्ना जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। हिंदुस्तान ने रांची के चिकित्सक डॉक्टर शशि दिनकर की दुमका की मसानजोर के गेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत न्यूजीलैंड ने संबंधों को दिया रणनीतिक महत्व का दर्जा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय ने गढ़वा से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 9000 करोड़ की लागत की रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियां। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को पद सृजित कर नियमित करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने राज्य में 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट, बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद। और रांची के सरला बिरला स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में नन्हे प्रतिभागी कर रहे शानदार खेल का प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

ये आकाशवाणी का चाई भाषा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी की महक। लोकगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हो लोकगीत कलाकार जगबंधु बारी एवं साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हो लोकगीत कलाकार जगबंधु बारी और साथियों के स्वरों में। और इसी लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम माटी की महक अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आपने सुना लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। कलाकार थे जगबंधु बारी और उनके साथी। ये आकाशवाणी कचाई बासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा।

0: कार्यक्रम विविधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको विविध रंगी जानकारियां देते हैं। आज हम आपसे बातें करेंगे पालन पोषण देखरेख योजना के बारे में। जी हां श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता बल्कि यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। श्रोताओं, यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय 3रा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, बातों को यहीं विराम देते हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन आले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मेरे बेटा क्रांति बेसरा आले नगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे मैं कहा कि हम बोले रुड़ तब में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहा बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे हतो था तो घर आई ने हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
8: तुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिनाया यापा मेरे तपा मेरे वा बेटा निका
9: अन्या मतुम दो बुंबई कोड़ा पटन मतुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन मतुम कितमई कोड़ा मैंने मिल उड़ी ने बागिया तो कि दुना सीआरपी कोलो पुलिस कोलो मिल लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम गया तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अली आया न तुम कहीं ना मिल आप ही लेता ना
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: विजयलक्ष्मी जी आप
11: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम विविधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं भेंटवार्ता। विषय है नारी शिक्षा। जानकारी दे रहे हैं विजय लक्ष्मी हेम्ब्रम और उनसे बातें कर रही हैं वीएम मंजू बोदरा।
0: विजय लक्ष्मी जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
12: नमस्कार। जैसे कि आज के हमारे चर्चा का विषय है नारी शिक्षा, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा है क्या।
13: शिक्षा का साधारण अर्थ हम पढ़ाई लिखाई से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा वो है जो हमें अपने उत्तरदायित्व के बारे में सही ज्ञान देती है, हमारा क्या

0: कर्तव्य है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति, ये हमें सही तरीके से बताती है।
1: ये तो है। और नारी शिक्षा क्या है?
0: और जहाँ नारी शिक्षा की बात होती है, तो जिस तरह समाज के दो धुरी हैं या दो पहिए हैं कहना चाहिए, पुरुष और नारी, तो यदि एक समाज का एक अंग पुरुष शिक्षित होगा और नारी अगर अशिक्षित होगी तो शायद सही तरीके से चलना मुश्किल होगा। इसलिए नारी शिक्षा भी उतना ही महत्व रखता है जितना पुरुषों की शिक्षा। नारी शिक्षित होती है तो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाती है, सही संस्कार दे पाती है। और जैसा पुराने समय में लोगों की ये मान्यता थी कि लड़कियों को पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि बड़े होकर उन्हें घर ही संभालना है, चूल्हा चौका ही करना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यदि महिलाएं पढ़ी होंगी तो भले वो आर्थिक रूप से परिवार को सहारा न दे सके, लेकिन उनके घर को चलाने का तरीका, घर का बजट बनाने का तरीका ये अशिक्षित महिलाओं से काफ़ी अलग होता है। वे एक योजना बना सकती हैं परिवार को चलाने के लिए, परिवार के लोगों को बांध के रखने का एक अच्छा जरिया बन सकती है। परिवार ही पहला पाठशाला होता है और नारी जो एक माँ होती है पहली शिक्षिका होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी। और इस तरह से हमारा परिवार शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा और देश हमारा आगे बढ़ेगा।
1: पर हमारे क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि नारी शिक्षा के लिए बहुत सारी बाधाएं भी हैं।
0: हाँ, हमारे क्षेत्र में नारी की शिक्षा में काफ़ी बाधाएं हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा मुझे लगता है कि गरीबी है, क्योंकि बेरोजगारी अधिक होने के कारण पढ़ाई का जो खर्च है ये हर परिवार अच्छी तरह से नहीं उठा पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर परिवार में दो बच्चे हैं तो परिवार का खर्च भी चलाना और बच्चे की पढ़ाई पर भी खर्च करना एक बेरोजगार परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है, परिवार के सदस्य बड़े होते हैं तो खर्च भी बढ़ता है, और बढ़ती हुई महंगाई में यदि प्रत्येक सदस्य कुछ कमा कर न लाए तो घर चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी कई विषम परिस्थितियां भी आती है जिसका सामना करना पड़ता है लोगों को।
1: बीमारी भी होती है तो हाँ। कभी कुछ असामयिक ऐसे घटनाएं भी हो जाती है कि रुपयों की ज़रूरत होती है
0: करते हैं, और ये परिवार की ज़रूरत भी होती है। कई बार तो हमारी अपनी रूढ़िवादी परंपरा भी सामने आती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और वो पढ़ने में काफ़ी आगे भी रहती हैं, लेकिन घर वालों का ये कहना होता है कि बड़े होकर के आखिर इसे शादी ही करना है तो इसकी शादी कर दी जाए। कम उम्र में शादी के बाद फिर बच्चियां आगे पढ़ नहीं पाती हैं, कई बार परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर उनका जो सपना होता है वो ऐसे ही चूर हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां तक हो सके हम अपनी बच्चियों को पढ़ने का सही मौका दें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। कभी किसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे उसमें हारे नहीं, टूटे नहीं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में लोग पढ़ सकते हैं। ऐसी कई योजनाएं चला रखी हैं जिसमें महिलाएं अपने काम के साथ साथ या फिर अपनी उम्र ख़त्म होने के बाद, जैसी महिलाएं कहती हैं कि अब हमारा पढ़ने का समय नहीं रहा, उसमें भी वो काफ़ी कुछ सीख सकती हैं

0: अपना इतना हुनर वो बना सकती हैं कि वे आत्मनिर्भर बन सके और परिवार को एक आर्थिक मदद या आर्थिक सहारा के रूप में परिवार के लिए वो खड़ी हो सकती हैं। आज ऐसी कई क्षेत्र है महिलाओं के लिए जिसमें वो अपना हुनर आजमा सकती हैं। सरकार इन सारी कार्यों की प्रशिक्षण की सुविधा रखी है, कई कई प्रशिक्षण निःशुल्क होते हैं और महिलाएं व्यवसाय शुरू करना चाहें तो इसके लिए उन्हें पूंजी के रूप में आर्थिक मदद भी दी जाती है। और इन सब के पीछे में एक ही मकसद है कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके।
1: तो हमारे क्षेत्र में इतने योजनाओं के बावजूद, इतने सुविधाओं के बावजूद भी नारी शिक्षा में जो बाधाएं आ रही है, इससे हम किस तरह से निजात पा सकते हैं, यानी कि हम किस तरह से नारी शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमारी बहनों को?
0: इसके लिए तो हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए हमें खुद ही जागना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हमें अपने अधिकारों को मेरे हाथ में लाकर नहीं देगा। हमें खुद समझना होगा कि हमें पढ़ना है और अपने अधिकारों को जानना है। हमें ये जानना है हमारी क्या सुविधाएं हैं और पढ़ करके हम और क्या क्या लाभ ले सकते हैं
1: और अपने परिवार की क्या आवश्यकताएं हैं, हम अपने जीवन स्तर को और किस तरह से
0: बेहतर बना सकते हैं
1: और इसमें अपना किस तरह का योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में जागरूक होना होगा।
0: हाँ, इसमें हम बहनों को ही ये सोचने की बात है क्योंकि कोई दूसरा अपने लिए नहीं सोचता है। यदि हमारे अपने घर में कोई हमारी बहन, माँ या भाभी अगर अशिक्षित है या फिर उसके पास ऐसा हुनर है जिससे वो आगे बढ़ सकती है तो हमें बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ अपने घर में ही नहीं, अपने आस पड़ोस में, समाज में ऐसा एक समूह बना करके लोगों के बीच में जागरूकता लानी चाहिए ताकि लोग आगे बढ़ें मिल करके और लोगों का सोचने का तरीका, हमारे रहने का तरीका में काफ़ी सुधार होगा
1: और अपने आपको भी हम बेहतर कर सकते हैं, अपने परिवार को बेहतर कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी हम बेहतर कर सकते हैं।
0: और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आत्मसम्मान रहेगा इसमें। जब हम अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे, जानेंगे और एक आर्थिक सहारा बनेंगे समाज के लिए तो इससे हमारा भी आत्मसम्मान रहेगा। यही मैं बहनों से कहना चाहूँगी कि आप अपने अधिकारों को जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बच्चियों की पढ़ाई के प्रति, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं उनके स्वास्थ्य के प्रति भी आप जागरूक रहिए। क्योंकि एक स्वस्थ बच्ची ही एक स्वस्थ माँ बन सकती है और स्वस्थ परिवार बन सकता है
1: और स्वस्थ नागरिक भी।
0: हाँ,
1: तो आपसे इस बारे में बातें हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नारी शिक्षा पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे विजय लक्ष्मी हेम्ब्रम और उनसे बातें कर रही थी वीएम मंजू बोदरा। और अब सुनवा रहे हैं ये फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये गीत। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे बातें करते हैं मलाला दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आज है 12 जुलाई। आज के दिन मलाला यूसुफ जई की जन्म वर्षगांठ का प्रतीक भी है। मलाला एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता को भारतीय कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए पहचाना जाता है और उनकी याद में 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा के अधिकार और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया है। यह दिवस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ जई के साहस, शिक्षा के प्रति समर्पण और दुनिया भर की लड़कियों को शिक्षा दिलाने के अभियान का सम्मान करता है। इसी जानकारी के साथ ही श्रोताओं, अब समय हो चला है आप सबों से विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए विदा दें, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हिंदी वार्ता कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

कार्यक्रम रसरंजन में सुनवा रहे हैं ये पहला गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आरजू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे का ये शीर्षक गीत, आवाज़ अलका याग्निक और अभिजीत की। और अब सुनवा रहे हैं

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आसिकी 2 का ये गीत, आवाज़ श्रेया घोषाल की। और अब सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आए दिन बहार का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आए दिन बहार के का ये गाना। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रस रंजन अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बज चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम फिल्म संगीत में सुनवाते हैं ये पहला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म है अकेले हम अकेले तुम।

और अब सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म अंश का ये गीत। गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: story, but everybody will sing with me.
1: Okay.
0: Ready? Come on. 1, 2.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आखिरी रास्ता का ये गाना, आवाज़ एस जानकी, मोहम्मद अजीज और साथियों की, बोलानंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अब सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म ऐतराज़ का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ऐतराज का ये गीत, आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है। परिवार देखते

0: ସକାଳୁ ହେତୁ ଦେଖା ତା ଘର ଆଇନି ଆମର ଘରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କେ ବାତ ହେତୁ ଏଖନ ବାତ ହେଇ ଯାହେ
1: ନୂତନ ବୁରାନ ସିଂ ତାମସଏ ଅନିତା ତାମସଏ ଭୁରୁପା ଆସିନ କନା ଏସବୁ ଦୁଃଖରେ ମିନା ଯାପା ମେରେ ତପା ମେରେ ଓଆ ବିଟା ନିକା
2: ଆଜ୍ଞା ନୂତନ ବୁମ୍ବାଇ କୋଡ଼ା ପାଟ ନୂତନ ଗୁଣ୍ଡେ କୋଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ହୁଣ ଦ କଦମରି କୋଡ଼ା ଗୋଟେ ପାଟ ପାଟ ନୂତନ କେତେ ମାଇ କୋଡ଼ା ମୁନିମେ ᱱᱩᱱᱤ ᱱᱮ ᱵᱟᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱠ ᱠᱤᱧ ᱱᱩᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱨᱛᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱞᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱞᱟᱲᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱩᱨᱩᱨᱮᱢ ᱜᱚᱭᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱛᱟᱭᱨᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱜᱩᱝᱜᱩ ᱦᱚ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱱᱮᱞ ᱢᱤᱭᱟ
3: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱩᱨᱮᱱ ᱯᱮ ᱛᱮ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱪᱮ ᱟᱡᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱛᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱜᱼᱮ ᱩᱣᱟᱜᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱮᱱᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
5: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
6: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी। आयुष्मान वह वंदना कार्ड से आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
7: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
8: इन संदेशों के साथ ही श्रोताओं, आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपके अपने प्रोग्राम जोहार रांची में। और आज इस प्रोग्राम के सफर में एक बार फिर आपकी हम सफर है आपकी दोस्त शिल्पी
2: और साथ में मनीष। दोस्तों कहते हैं ना कि काम के प्रति समर्पण अच्छी बात है, लेकिन काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल,
2: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सफलता की दौड़ इतनी तेज हो गई है कि कई बार लोग अपने परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी समय नहीं निकाल पाते।
1: लेकिन

0: सच्ची सफलता वही है जिसमें उपलब्धियां भी हों और मुस्कुराहट भी, काम भी हो और अपनों के लिए समय भी, सपने भी पूरे हों और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है।
1: इन्हीं सुविचारों के साथ बढ़ते हैं आज के सफर पर और कहते हैं
0: जोहार।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब बातें आज के इतिहास की। हर तारीख की तरह इतिहास में 12 जुलाई का दिन भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए प्रतिबंध को 12 जुलाई 1949 के दिन ही सशर्त हटा लिया गया था।
1: आज ही के दिन सन 1823 को भारत में निर्मित पहला वाष्प इंजन वाला जहाज डायना का कोलकाता में जलावतरण हुआ, अर्थात पानी में उतारा गया। इसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय कोलकाता के डॉकयार्ड में ही तैयार किया गया था।
0: सन 1960 में आज ही के दिन यानी 12 जुलाई को ही रांची विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पहले रांची विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय और फिर बिहार विश्वविद्यालय का हिस्सा हुआ करता था, जो कि 1960 में अलग होकर एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय बना।
1: सन 1998 में 16वें विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में फ्रांस ने ब्राजील को 3-0 से हराया। ये फ्रांस का पहला वर्ल्ड कप खिताब था। इस मैच में फ्रांस के महान खिलाड़ी जिदान ने फाइनल में 2 बेहतरीन हेडल गोल करके अपनी टीम को चैंपियन बनाया।
0: आज ही के दिन सन 2003 में उत्तर और दक्षिण कोरिया परमाणु हथियार मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमत हुए।
1: और सन 2005 में मशहूर क्रिकेट अंपायर डेविड शेफर्ड ने संन्यास लिया। उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 12 जुलाई 2005 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच द ओवल मैदान पर खेला गया एक वनडे मैच था,
0: जहां खिलाड़ियों और दर्शकों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अपने 22 वर्षों के लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 92 टेस्ट और 172 वनडे मैच में अंपायरिंग की।
1: सन 1912 में क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाले पहली विदेशी फिल्म बनी। और सन 1957 में आज ही के दिन अमेरिकी सर्जन लेरोय ई बर्नी ने बताया कि धूम्रपान और फेफड़े के कैंसर में सीधा संबंध होता है। बातें अभी और भी होंगी, लेकिन उन बातों से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब जिक्र उनका जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज ही के दिन सन 1982 में प्रख्यात साहित्यिक संस्था प्रसाद परिसर के भूतपूर्व सभापति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का निधन हुआ था।
1: सन 2002 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक और गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री घनश्याम भाई ओझा का निधन हुआ, और सन 2005 में पीके वासुदेवन नायर ने भी अंतिम सांसें ली। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिनका संबंध राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से था।
0: सन 2012 में विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का निधन हुआ था। दारा सिंह ने रामानंद सागर द्वारा निर्मित धारावाहिक रामायण में हनुमान की भूमिका निभाकर हिंदुस्तान के घर घर में प्रसिद्धि पाई।
1: उन्होंने करीब 36 वर्षों तक अखाड़े में पसीना बहाया और उनकी लड़ी गई लगभग 500 कुश्तियों में वे एक भी नहीं हारे।
0: इसी वजह से दारा सिंह का नाम ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर हॉल ऑफ फेम में दर्ज किया गया। उन्होंने सन 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी।
1: बाद में दारा सिंह अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को पराजित कर फ्रीस्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बने। दारा सिंह को 1966 में रुस्तम ए पंजाब और 1978 में रुस्तम ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया।
0: सन 2013 में हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण का भी निधन हुआ। इन्होंने लगभग 350 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मधुमती, उपकार, जंजीर, मजबूर, कालिया, शराबी जैसी मशहूर फिल्मों के नाम शामिल हैं। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण और विलन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
1: वर्ष 1999 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का भी निधन हुआ। गूंज उठी शहनाई, मदर इंडिया, दिल एक मंदिर, धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू और सूरज जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और जुबली कुमार के नाम से पुकारे जाने लगे।

0: कहा जाता है कि जब प्रकृति मुस्कुराती है तो उसके चेहरे पर फूल खिल उठते हैं, और अगर इन खिले फूलों को एक साथ देखने का सौभाग्य मिले तो वो अनुभव किसी स्वर्ग से कम नहीं होता।
1: आज हम आपको लिए चल रहे हैं उत्तराखंड की गोद में बसे एक ऐसे ही अद्भुत स्थल की सैर पर जिसे प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंगों से सजाया है। जी हाँ, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान।
0: समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये घाटी वर्षा ऋतु में रंग बिरंगे फूलों की चादर ओढ़ लेती है। जुलाई और अगस्त के महीनों में यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के हिमालयी फूल एक साथ खिलते हैं।
1: ऐसा मालूम होता है जैसे धरती पर किसी कलाकार ने रंगों का विशाल कैनवास बिछा दिया हो। ये घाटी केवल अपनी रंग बिरंगी फूलों की सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है।
0: वर्ष 2005 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियों के साथ साथ हिमालयी पक्षियों और वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं।
1: फूलों की घाटी तक पहुंचने का सफर भी किसी रोमांच से कम नहीं। गोविंद घाट से शुरू होने वाली पदयात्रा हर मोड़ पर प्रकृति के नए रंग दिखाती है।
0: कलकल बहती धाराएं, बादलों से ढके पहाड़, झरनों की मधुर ध्वनि और शुद्ध पर्वतीय हवा मन को एक नई ऊर्जा से भर देती है।
1: यात्रा के दौरान श्रद्धालु और पर्यटक पास ही स्थित पवित्र हेमकुंड साहिब भी जाते हैं, जिसे ये यात्रा आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम बन जाती है।
0: यदि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, कैमरे में यादगार तस्वीरें कैद करना चाहते हैं, या शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं,
1: तो फूलों की घाटी आपके लिए एक ऐसा अनुभव है जिसे शहरों में पूरी तरह शब्दों में पूरी तरह से बांधा नहीं जा सकता। शिल्पी और उसे केवल महसूस किया जाता है ना, क्योंकि फूलों और पौधों को देखकर तो मन झूम उठता है।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, जहां अब कुछ बातें करियर की। दोस्तों, पहले करियर का मतलब होता था एक बंधे बंधाए वक्त पर काम करना, लेकिन आज का युवा चाहता है कि वो अपने समय का मालिक खुद बने।
1: तो अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो इसका सबसे अच्छा जवाब है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब है किसी एक कंपनी के लिए अस्थायी नौकरी करने के बजाय अलग अलग क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना।
0: यानी आप खुद अपने बॉस होते हैं, ये आप तय करते हैं कि कब काम करना है, कितना काम करना है और किसके लिए काम करना है। फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आप अपने स्किल्स पहचानिए,
1: फिर उस स्किल को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, एक छोटा सा पोर्टफोलियो तैयार कीजिए और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल बनाइए।
0: शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ काम भी बढ़ेगा और इनकम भी। बहुत सारे करियर के शुरुआती दौर में चुनौतियां तो होती ही हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे ही चैलेंजेस हैं कि इनकम स्टेबल नहीं होगा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और हर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
1: जो लोग इन चुनौतियों को समझ लेते हैं वो फ्रीलांसिंग में बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके फायदे ये हैं कि समय की आजादी रहती है, घर बैठे काम हो जाते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज रहते हैं।
0: बिल्कुल, और अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का मौका भी मिलता है। मनीष, दोस्तों, फ्रीलांसिंग सिर्फ एक करियर नहीं, ये एक सोच है, खुद पर भरोसा करने की सोच, अपने सपनों को खुद शेप देने की सोच।
1: तो आपके अंदर भी हुनर है और कुछ अलग करने की चाह है तो फ्रीलांसिंग आपके लिए एक बेहतर रास्ता बन सकता है,
0: क्योंकि जब काम दिल से हो तो ऑफिस के चार दीवारों की जरूरत नहीं होती।

0: जोहार रांची में बातें हमारे देश की अद्भुत और समृद्ध संस्कृति की। हमारी संस्कृति की अपनी एक अनूठी खुशबू है, अपना एक अलग रंग है। और आज हम आपको लिए चल रहे हैं पूर्वोत्तर के एक ऐसे ही जादुई और ऐतिहासिक सांस्कृतिक महोत्सव के सफर पर।
1: मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाले पनार समुदाय के लिए जुलाई का महीना सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि अदृश्य बुराइयों से जंग का होता है।
0: जी हाँ, भारत के खूबसूरत राज्य मेघालय के जोवाई शहर में हर वर्ष जुलाई के महीने में मनाया जाने वाला महोत्सव है बेहदियन खलाम, जो इस वर्ष 11 से 14 जुलाई तक मनाया जा रहा है।
1: ये जयंतिया जनजाति के पनार समुदाय के सबसे बड़ा त्यौहार है और शब्दों को तोड़कर समझे तो बेह का मतलब है भगाना, दियन का मतलब है लकड़ी की लाठी और खलाम का मतलब है महामारी, यानी लाठियों से महामारी के राक्षस को खदेड़ना।
0: इस त्योहार की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। पुरुष जंगलों से पवित्र पेड़ों के तने लाते हैं जिन्हें दियन खलाम कहा जाता है। अनुष्ठानों की शुरुआत और नेतृत्व समुदाय के पारंपरिक मुखिया द्वारा किया जाता है,
1: जो बुरी आत्माओं बीमारियों को दूर करने और अच्छी फसल एवं समुदाय की समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये आयोजन पनार लोगों की कृषि परंपराओं और गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है।
0: यहाँ मुख्य उत्सव से पहले लोग अपने घरों की छतों को बांस की लाठियों से पीटते हैं, जो प्रतीक है महामारी के राक्षस को भगाने का। सदियों पुरानी ये सांस्कृतिक परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है, जो हमें बताती है कि कैसे पूरा समाज एकजुट होकर हर बुराई को हरा सकता है।
1: इस महोत्सव का सांस्कृतिक वैभव तब देखते ही बनता है जब आसमान छूते 30-40 फीट ऊंचे रंग बिरंगे रथ, जिन्हें रॉट्स कहते हैं, सड़कों पर निकलते हैं
0: और फिर पूरा शहर उमड़ पड़ता है ऐतनार नाम के एक पवित्र तालाब में। घुटने भर कीचड़ और पानी में हजारों लोग पारंपरिक संगीत पर झूम उठते हैं। ये दृश्य एहसास कराता है कि हमारी जनजातीय संस्कृति में प्रकृति, लोक कला और सामूहिक सद्भाव का कितना गहरा जुड़ाव है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप भारत की असली सांस्कृतिक विविधता को महसूस करना चाहें तो मेघालय के इस अद्भुत उत्सव का हिस्सा जाकर बने, जहां शोर है, कीचड़ है और है आस्था का वो सैलाब जो डर पर इंसान की जीत का जश्न मनाता है।
0: बेहदियन खलाम गवाह है कि जब पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हो तब भी इंसानी जज्बा सबसे ज्यादा चमकता है, झूमता है,

में गाँव है रे लाऊ चबाओ यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाओ में जान जगा झुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो, नाचो।

0: जोहारा जी, मैं अब बातें मौसम के मिजाज की, तो ये तो हम सब देख ही रहे हैं कि मानसून का रंग अब हमारी रांची क्या पूरे देश में पूरी तरह चढ़ चुका है।
1: बादलों की आवाजाही, ठंडी हवाएं और कभी हल्की तो कभी तेज बारिश, ऐसा ही कुछ आज भी रहने वाला है। दिन की शुरुआत बादलों के साथ तो हो ही रही है, बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं।
0: आज मौसम विभाग ने गरज चमक, बिजली गिरने और लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड के कई हिस्सों के साथ रांची में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
1: अगर बातें करें आज के तापमान की, तो आज का तापमान अधिकतम लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
0: तो अगर आज आपने वीकेंड प्रोग्राम बना रखा है और कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो अपने साथ छतरी या रेनकोट रखना ना भूलें।
1: सड़क पर वाहन चलाते समय रफ्तार थोड़ी धीमी रखें और सावधानी बरतें। और हाँ, बारिश के दौरान पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें।
0: बारिश की हर बूंद अपने साथ मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, बौछारों का संगीत और सुकून भरा एहसास लेकर आती है।
1: तो आइए इस सुहाने मौसम का आनंद लेते हैं, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए।

0: मनीष, बारिश की फुहारें मन को सुकून तो देती हैं, लेकिन बदलता मौसम शरीर की इम्यूनिटी की परीक्षा भी लेता है। ऐसे में कुछ आसान घरेलू नुस्खे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं तो बारिश के मजे भी बने रहेंगे और सेहत भी। क्या कहते हो?
1: अगर हल्की ठंड लग रही हो और गले में खराश महसूस हो रही हो तो अदरक, तुलसी और काली मिर्च की हल्की सी चाय आराम पहुंचाती है।
0: चाहे तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शहद को बहुत गर्म पेय में ना मिलाएं। बारिश के मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में अगर खाने के बाद एक चम्मच भुना अजवाइन और भुना सौंफ मिलाकर खा लें तो ये पाचन में मदद करेगा।
1: भीग कर घर लौटे हो तो गुनगुने पानी से हाथ पैर धोकर सूखे कपड़े पहन लीजिए। इससे शरीर को गर्माहट मिलती है और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है।
0: और मच्छरों से बचाव भी इस मौसम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, खिड़कियों पर जाली लगाएं और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें।
1: और एक छोटी सी लेकिन बेहद काम की बात, बारिश में कटे हुए फल, खुले में बिकने वाले चाट पकौड़ी या लंबे समय से रखा हुआ भोजन खाने से बचें। याद रखिए, स्वाद कुछ मिनटों का होता है लेकिन सेहत लंबे समय तक साथ निभाती है।
0: बिल्कुल। और एक और बात है, घरेलू नुस्खे सामान्य देखभाल में मदद कर सकते हैं, लेकिन यदि तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, लगातार उल्टी दस्त या कोई भी गंभीर लक्षण दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर से सलाह लेना सही कदम होता है।
1: तो आइए इस मानसून अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें।

0: और चलते चलते आखिर में बस ये कहना चाहेंगे कि स्वयं को कभी भी माचिस की तिली ना बनाएं जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे, बल्कि खुद को वो शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वो खुद ही बुझ जाए।
1: यानी छोटी छोटी बातों को अपने दिल दिमाग पर हावी ना होने दें, बल्कि शांत मन से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में ही समझदारी है।
0: इन्हीं सकारात्मक बातों के साथ वक्त हो चला है जोहार रांची के आज के पन्नों को यहीं समेटने का। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।
1: और फिलहाल जोहार रांची के इस सफर में हमें देविदा
0: जोहार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं और ये वक्त है श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं इनकी फरमाइश। ये है लेवई से गुलाबदास पानीपुरी। इन्होंने सुनना चाहा है अलका याग्निक और सोनू निगम को बॉर्डर फिल्म में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

अगली फरमाइश हमने ली है लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा की। और इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म मिस्टर एक्स से पलक मुच्छल को। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि सिंह ने और संगीत जीत गांगुली का है।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है नीलेश मिश्रा का लिखा हुआ श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है एमएम करीम ने और फिल्म का नाम है जिस्म। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा बासंती बनमाली बेसरा और सिद्ध कुमारी ने।

अगली फरमाइश हमने ली है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की, और इन्होंने सुनना चाहा है टशन फिल्म से उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर को। गीत के बोल लिखे हैं कौशल मुनीर ने और धुन बनाई है विशाल शेखर।

दबंग 2 यह फिल्म का नाम, और आइए सुनते हैं इस फिल्म से राहत फतेह अली खान, शादाब फरीदी और श्रेया घोषाल को। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मिका बिरक ने।

आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर 12 बज चुके हैं और ये वक्त है बहनों के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। आज इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ हैं सुमन तिवारी और लता।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। इस खूबसूरत से सफर में आपकी हम सफर हैं, हम दो सखियां लता और सुमन। खुद पर विश्वास और आत्मविश्वास वास्तव में जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने की सबसे पहली सीढ़ी होती है और हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है।
1: तो बहनों स्वीकार कीजिए लता का भी प्यार भरा नमस्कार। और जब आप खुद से सकारात्मक उम्मीद करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और हर मुश्किल काम जो हो वो आसान लगने लगता है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बहनों उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटे। जब आप छोटे लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्यों सुमन?
0: बिल्कुल सही कहा लता आपने। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो खुद को कभी भी कम ना समझे, है ना। और अपने जीवन में जो भी पिछली सफलता हासिल की है हमने, उसे याद रखें और जो नकारात्मक विचार हैं उन्हें दूर रखें। यदि कोई भी गलतियां होती है तो उससे हम हार मानने के बजाय सीखने का अवसर माने, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: सुमन, हाँ तुमने बहुत अच्छी बात कही कि खुद को कभी भी कम ना समझे बहनों। और जब भी हमें हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं तो हमें उससे दूर रखना चाहिए और अपनी सफलताओं को याद करना चाहिए।
0: बिल्कुल, जब हम सफलताओं को याद करेंगे तो आगे बढ़ने का एक हौसला मिलता है हमें और हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं।
1: हाँ सुमन, सुमन जीवन में लक्ष्य और सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक है। सफलता पाने के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास जो है वो होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम खुद की क्षमता को समझते हैं तो आत्मविश्वास भीतर से आता है और यह लोगों को जो है वो सिखाता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और अपने मंजिल को पाना है।
0: सही बात बोला। देखिए, जब हम स्वभाव से आशावादी, उत्साही और सकारात्मक सोच रखते हैं लता, तो एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हैं।
1: हाँ।
0: और जो ज्ञान है वह हमारे आत्मविश्वास की जो सबसे बड़ी कुंजी होती है।
1: बिल्कुल,
0: यह जो कि आपके अपनी क्षमताओं को समझने में भी मदद करता है। और जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, जब अपने आप पे विश्वास हो, भरोसा हो, तो हम एक जीवन में सटीक और जो त्वरित निर्णय होता है उसे लेने में भी सक्षम होते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल। और बहनों खुद पर विश्वास करने के लिए, आत्मविश्वास के लिए एक समग्र रणनीति भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: जब आप कोई भी कार्य जिज्ञासा के साथ करते हैं ना, तो पूर्वाग्रह के साथ उसके परिणाम जो होते हैं वो अवश्य से संतोषजनक होगा। आपकी यह विश्वास बढ़ती जाएगी कि आप भविष्य में भी कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं। आपका आत्मविश्वास और आप खुद पर भरोसा करें और कभी भी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करें, खुद पर विश्वास रखें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, तो उनके आदि हो जाते हैं। और जब अपने पे विश्वास करके हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वो सफलतापूर्वक बिल्कुल आसानी से अपने भरोसे कर सकते हैं हम। और जब आपको खुद पर भरोसा होगा तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपके रास्ते की दीवार नहीं बनेगी। और जीतने वाले जो लोग हैं कभी हार नहीं मानते हैं और जो हार मानने वाले हैं वो कभी नहीं जीत सकते हैं, है ना। तो जब आपका अपने आप पर अटूट विश्वास होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं हरा सकती है।
1: हाँ सुमन, ये भी बड़ी अच्छी बात तुमने कही कि हमें कोई हरा नहीं सकता अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है।
0: बिल्कुल,
1: यदि आपको खुद पर पूर्ण विश्वास है बहनों तो आप दुनिया की हर बाधा को पार कर सकती हैं, है ना।
0: बिल्कुल सही।
1: और असफलताएं और चुनौतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन खुद पर भरोसा ही वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल से निकाल कर जीने की जो है वो राह को आसान करता है।
0: बिल्कुल सही कहा लता आपने। और जब आप खुद से सकारात्मक उम्मीद करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऊर्जा और कार्य योजना तैयार करने लगता है। और मैं यह भी कह सकता हूँ या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, खुद से उम्मीद, भरोसा आपको आगे बढ़ाता है। और जब आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ उतारकर अपनी खुशी, शांति और वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं तो जीवन वास्तव में आसान और सार्थक हो जाता है। जब आप खुद अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन करने लगते हैं तभी दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है ना?
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, बड़े अच्छे उदाहरण के साथ बिल्कुल बताया हमारी बहनों को कि खुद पर जब हम यकीन कर लेते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल जो है वो रोक नहीं पाती। और सुमन, बिना स्वयं की योग्यताओं पर भरोसा किए कोई भी नई शुरुआत या बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, है ना? तो बहनों, जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो यह आत्मसंदेह को दूर करता है और किसी भी काम को करने का साहस प्रदान करता है। जब आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो सारी जो दुविधाएं हैं वो खत्म हो जाती है और आप बिना झिझक के निर्णय ले पाते हैं।
0: बिल्कुल सही, किसी भी तरह का ना कोई डर होता है ना झिझक होती है। हम अपने कार्य को बिल्कुल आराम से अपने तरीके से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जीवन।
1: और जब हम अपने बारे में जब सोचने लगते हैं तो अक्सर ये याद करते हैं।
0: बिल्कुल, तो चलिए हम मनोरंजन की दुनिया में चलते हैं।
1: हाँ,
0: क्या है ना, तो पहले गीत सुन लेते हैं हम लोग टेम पर्वत से। इसके संगीतकार हैं जयदेव और गीत जाने निशार अख्तर और गायक हैं लता मंगेशकर।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।
6: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो मैनो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, जहां हमें लेकर चलेंगी सुमन।
2: चलिए हम एक जानकारी कराते हैं आपको वेद वार्ता से। बच्चों के लिए जरूरी है शारीरिक गतिविधि, इसके बारे में हमें बता रही है उर्मिला सिंह और इनसे बातचीत की है हमारी सखी लता।
3: आज के समय में बच्चों का अधिकतर समय मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बीत रहा है। इसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है। ऐसे में नियमित शारीरिक गतिविधियां, खेलकूद और व्यायाम बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गए हैं। बच्चों के लिए जरूरी है शारीरिक गतिविधि, आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे बीच है वरीय शिक्षिका उर्मिला सिंह जी, जो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। उर्मिला मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद लता जी। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। सबसे पहले लता जी और आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।
3: जी मैम। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको शिक्षा जगत का एक अच्छा खासा लंबा अनुभव है और आप अपने शैक्षिक जीवन में बच्चों को देख भी रही हैं, तो मैम बच्चों के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि क्यों जरूरी है?
4: हम जैसा कि हम सब जानते हैं मैम कि नियमित फिजिकल एक्टिविटी किसी भी बच्चे के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाती है। इट इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन मैडम, इवन बी एडल्ट, हम लोग को भी जरूरी है कि हमारी बॉडी को जितना हम एक्टिव रखेंगे, बॉडी हमारा उतना ही पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसमें होता क्या है कि नियमित शारीरिक गतिविधियों से बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मोटापे का खतरा कम होता है और उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास बेहतर होता है। तो शारीरिक गतिविधियां तो बहुत ही आवश्यक है आजकल के बिजी लाइफ के लिए मैडम।
3: बहुत खूबसूरत जवाब मैम। मैम, अलग अलग आयु में बच्चों के लिए प्रतिदिन कितनी शारीरिक गतिविधि की जरूरत होती है?
4: अगर मैं बात करती हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
3: जी,
4: तो अलग

0: आयु के बच्चों का अलग अलग एक्टिविटी होता है, जैसे एक साल से चार साल के बच्चों के लिए कम से कम 3 घंटे खेल जरूरी है, और 5 साल से 17 साल के बच्चों के लिए 1 घंटा वो जरूर खेले, लेकिन उनकी शारीरिक गतियां इतनी तेज हो कि उनकी फुल बॉडी एक्सरसाइज विद इन 1 आवर में ही 1 घंटे में ही हो जाए। उसके लिए वो साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जिनका फुल बॉडी एक्सरसाइज 1 घंटे में हो सकता है।
1: ये तो बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी मैम। मैम आजकल बच्चे लगातार मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहते हैं, लगातार मोबाइल और टीवी देखने का बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: ये तो हम सब जाने मैम, हर घर में परेशानी है टीवी और मोबाइल का। अधिक स्क्रीन टाइम से तो आंखों का पर असर जरूर खराब होता है, और ये सच में कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए योगदान है। समाज कहिएगा जो भी कहिए, इसका सबसे मेन एग्जाम्पल कोविड आया। जब कोविड आया तो बच्चों का आउटडोर गेम बंद हो गया, फुल्ली वो घर में इंडोर खेलने लगे। इंडोर का मतलब उनका हमेशा वो बॉडी मूवमेंट कम हो गया, मोबाइल और टीवी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए। इवन स्कूल ने भी ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, तो उनको 6 घंटा तो उसमें इन्वॉल्व रहना ही रहना था, उनका टीचिंग होने लगा उससे, फिर एक्टिविटीज, होमवर्क, एवरीथिंग वाज थ्रू ऑनलाइन। तो यहाँ बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हुए टीवी और मोबाइल में, उसका असर ये हुआ कि एक हैबिट हो गया उनको। अब ऐसा है कि बिना मोबाइल के उनको रहना मुश्किल है, तो इसका कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को इससे कैसे हटाएं, इससे दूर कैसे करें। उनकी फिजिकल मूवमेंट कम होता है तो उनको कैसे हम प्रेरित करें कि भाई आप आउटडोर गेम भी खेलो, और इससे क्या बैड इफेक्ट उनके आईसाइट पे, उनके बॉडी पे, उनका डे टू डे लाइफ पे पड़ेगा, उनको बताना हमें बहुत जरूरी है। उन्हें हमें बताना होगा कि एक जगह बैठकर जो मोबाइल में देखते हो, टीवी देखते हो, उससे तो फिंगर पे जो खराब असर होता ही है, रे जो निकलता है मोबाइल से वो बॉडी के लिए बहुत खराब है, उसे मोटापा बढ़ता है, साउंड स्लीप भी प्रभावित होता है मैडम। अगर कोई बच्चा 1 घंटा नहीं सो पाएगा तो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी है, उनका बिहेवियर से दिख जाता है कि ये मोबाइल एडिक्ट बच्चा है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने हमारी बहनों को बताया मैम। मैम शारीरिक गतिविधियां बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में कैसे मदद करती है?
0: देखिए क्रिएशन एक वर्ड है मनोरंजन
1: जी,
0: तो मनोरंजन बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोग मूवी देख के मनोरंजन करते हैं, कुछ टीवी देख के करते हैं, कुछ अपने आप को एंटरटेन करते हैं पार्टी में जाके, लेकिन बच्चों के लिए खेल कूद ही बहुत बड़ा मनोरंजन है
1: जी।
0: जिससे वो अपने तनाव को, टेंशन को, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। उससे उनका क्या होता है, खेलते हैं तो अपने ग्रुप में मिलते हैं, उससे उनका टीम वर्क स्ट्रांग होता है, डिसिप्लिन सीखते हैं वो, उनकी आत्मविश्वास बढ़ती है, आपस में बात करके अपनी भावनाओं को भी वो एक्सप्रेस करते हैं, और उससे होता है कि बहुत कुछ वो खेल खेल में बहुत कुछ दूसरे बच्चों से भी सीखते हैं, तो उससे उनका कॉन्सेंट्रेशन क्लास प्लस घर की एक्टिविटीज में भी ज्यादा बढ़ जाता है मैडम।
1: बहुत खूब मैम, ये तो बहुत सटीक जानकारी है मैम। पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी है, तो पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?
0: सबसे पहले मैम हम पेरेंट्स को डेली रूटीन बनाना चाहिए बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल, स्कूल से आने के बाद
1: जी,
0: जिसमें स्टडीज के साथ साथ रोज कम से कम 1 घंटा खेल का भी होना चाहिए, खेल हो या फिर कोई एक्सरसाइज हो वो मस्ट है। तो उस अकॉर्डिंग टू एज उसमें होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 4 साल के बच्चों के लिए हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं या फिर 10 साल के बच्चों को हम आधा घंटा पढ़ा रहे हैं, वैसा नहीं। अकॉर्डिंग टू एज हमको रूटीन बनाना होगा, और कभी कभी फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि कभी कभी बच्चों का मूड नहीं हो, मूड स्विंग कर रहा है, तो थोड़ा सा उसमें हम लोग को थोड़ा लचीलापन लाना पड़ेगा। लेकिन है कि टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है, टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस, बहुत जरूरी है। तो खेल और स्टडीज में दोनों को बैलेंस कर चलना बहुत जरूरी है, जैसे बैलेंस शेड्यूल से बच्चों का एकेडमिक और ओवरऑल डेवलपमेंट होता ही है। कभी कभी होता है ना कि बच्चों का मूड चेंज किया तो तब हमें अपने रूटीन के अकॉर्डिंग उनको देखना पड़ता है, और फिक्स नहीं, कभी थोड़ा सा कुछ नहीं होता है मैडम।
1: बिल्कुल मैम, जिन बच्चों के पास खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, चूंकि आज हम लोग सब अपार्टमेंट कल्चर में जी रहे हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं मैम बताएं?
0: हाँ मैम, आजकल ज्यादा लोग 75% अपार्टमेंट में ही रहते हैं।
1: हाँ।
0: तो जहाँ बच्चों को खेलने के लिए इनफ स्पेस नहीं है।
1: हाँ।
0: ज्यादा तो उनका इंडोर गेम ही होता है, तो इसमें हम पेरेंट्स को चाहिए कि इंडोर को इतना इंटरेस्टिंग बनाए, ऐसा अरेंजमेंट करे घर में ही, ताकि बच्चों को आउटडोर वाला गेम के लिए फील नहीं हो कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल बहुत बोरिंग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए उनको लूडो, कैरम, स्किपिंग, एक्सरसाइज, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जो कि घर में किए जा सकते हैं। हाँ, टाइम टू टाइम कई कई बच्चों को वंस इन अ वीक पार्क मिले गए, कहीं आउटडोर लेकर गए, लेकिन ज्यादातर देखिए आजकल है कि पेरेंट्स मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, तो वे अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि व्हेनेवर यू आर फ्री, जब भी आप खाली हैं, अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम दीजिए, ताकि बच्चा भी रियलाइज करे आई एम द इम्पोर्टेंट, आई एम मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर माई पेरेंट्स, उनको अपना वैल्यू पता चलेगा। और हम ही हैं, हम पेरेंट्स ही हैं जो कि अपने बच्चों को सेफ एनवायरमेंट दे सकते हैं। मतलब वी शुड इंश्योर दैट चिल्ड्रन ग्रो अप इन अ सेफ, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरमेंट। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? हम पेरेंट्स से मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फैमिली में ही मिलेगा मैम।
1: बिल्कुल। तो मैम, अगला सवाल भी मेरा अभिभावकों से ही जुड़ा है कि माता पिता बच्चों को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए कैसे प्रेरित करें?
0: देखिए मैम, बच्चों का बचपन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें रोज खेलने, दौड़ने और खुलकर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज भी करना चाहिए हम पेरेंट्स को।
1: जी,
0: जैसे स्कूलों में आजकल प्ले बेस्ड लर्निंग शुरू हो गया है, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी लर्निंग पॉलिसी चेंज कर दी है, नेप, एनईपी, जो नेप का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो हम टीचर्स को वंस इन अ ईयर 50 आवर्स का ट्रेनिंग दिया जाता है।
1: जी,
0: इसलिए कि बच्चों का किस तरह से हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों में हो, उसमें सब चीज इन्वॉल्व है, सभी के साथ साथ एक्टिविटीज, पूरा चीज उसमें बच्चों को मिलेगा, जिसका फुल बॉडी एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रेन का भी एक्सरसाइज है, और जो आजकल आगे ग्रो करने के लिए जो बच्चों को चाहिए वो सब हम लोग को ट्रेनिंग के थ्रू बताया जाता है, जिसको कि हम लोग क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं। और यही नहीं मैम, हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया, कर रही है आगे भी, जैसे उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी स्कूल में दे रहे हैं टाइम टू टाइम, फिर खेल इंडिया का भी कहीं ना कहीं योजनाएं बन रही है, ये सब गवर्नमेंट भी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है, ताकि बच्चे फिजिकली और मेंटली हर तरह से डेवलप करें अपने आप को। और अब ये हमारा दायित्व है मैम कि हम अपने बच्चों को दुनिया से, मोबाइल की दुनिया से निकाल कर खेल की दुनिया में कैसे लेके जाए, ताकि वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रूप से अधिक स्वस्थ, आत्मविश्वासी और खुशहाल जीवन बिता सकते मैम।
1: बहुत सटीक जवाब मैम, बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया, और आज आप हमारी कार्यक्रम में जुड़ी हैं, तो हम चाहेंगे मैम कि अब हम अपनी बहनों को आपके माध्यम से कुछ संदेश पेश करें, तो मैम चलते चलते आप हमारी बहनों से क्या कहना चाहेंगे, अपना संदेश दें?
0: हाँ जरूर मैडम, मैं यही करना चाहूँ, प्रॉपर्टी तो बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी, हमारे बच्चे हमारे लिए। हम लाख पैसा कमा ले, लाख बैंक बैलेंस कर ले, अगर बच्चे सही ट्रैक पे नहीं है तो एवरीथिंग इज यूजलेस। तो हमको अपने बच्चे को, चाहे अपने बच्चे हो चाहे पड़ोस के बच्चे हो, इवन अगर मैं स्कूल में इन्वॉल्व हूँ तो मेरे क्लास में 40 बच्चे जो कि मेरे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ जैसे मैं अपने बच्चे को गाइड करती हूँ वैसा मैं अपने क्लास में बच्चों को ही गाइड करती हूँ। तो एज अ टीचर मेरा यही रहता है कि बच्चे बेस्ट करें, ताकि अपने पेरेंट्स का, स्कूल का, टीचर का, सबका नाम रोशन करें, उसमें हम लोग को भी बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा मैडम।
1: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत संदेश मैम। मैम आज आप हमारी कार्यक्रम में जुड़ी, आपने हमारी बहनों से इतनी अच्छी जानकारी

0: इसमें सबसे जो जरूरी काम है वह है कि गमलों में पानी को जमा ना होने दें, और गमले में पानी जो रुकता है ना उससे पौधे का खराब होने का कारण बनता है।
1: हाँ बहनों, इस मौसम में जो खरपतवार है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं बारिश की वजह से,
0: बिल्कुल
1: तो खरपतवार घास आदि को आप हटाएं और बारिश के दौरान अतिरिक्त खाद न डालें। ये हम भूल कर बैठते हैं, हर मौसम की तरह ही खाद इसमें डालते रहते हैं, पर बारिश में इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो हर 10-15 दिन में हल्की सी गुड़ाई जरूर करें, और इससे जड़ों तक हवा जो है वो पहुंचती है और पानी जल्दी सूखता है। और ध्यान रखें बहनों कि जो भी आप गुड़ाई करते हैं उस करते वक्त पौधों की जो मुख्य जड़ है उसको नुकसान न पहुंचे।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए कि साथ में बरसात में जो पौधे हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं,
1: हाँ
0: अगर पौधे में कोई भी सूखी या बीमारी वाली टहनी हो तो उसे साफ और धारदार कटर से काट दें, और नमी के कारण पौधों में कीड़े और फंगस लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए हम नीम की खली या नीम के तेल के स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: वाह, ये तो
0: है ना?
1: बहुत अच्छी जानकारी तुमने दी
0: बिल्कुल
1: सुमन। लेकिन क्या किया जाए, जो स्टूडियो की घड़ी है वो कुछ इशारा कर रही है कि
0: बिल्कुल
1: अब समय हो चला है बहनों से विदा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:45 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम लोक रंग का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं इग्नासियो स्केरगेट्टा और साथी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए कि कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूको

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत विभिन्न नदियों और नहरों में 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिया निर्णय। ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ के प्रशासनिक आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। साइबर अपराध के पीड़ित आम लोगों और व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने शुरू किया जीआरएम पोर्टल। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने के दिए संकेत। राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत राज्य के 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ऊर्जा विभाग विभिन्न जिलों में स्मॉल, मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की योजना तैयार कर रहा है। ये प्रोजेक्ट रांची, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम जिलों के नदियों और नहरों के लिए किनारे लगाए जाएंगे। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। रांची में अपने निजी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने राजनीतिक जीवन का लंबा सफर तय किया है। ऐसे में राजनीति में भी पड़ाव जरूर आना चाहिए, आपको स्वतः अवकाश ले लेना चाहिए। वित्त मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की राजनीति का उन्हें कोई लालसा नहीं है। उन्होंने धर्म कर्म, सामाजिक उत्थान, लेखन कार्य और देशाटन करने की इच्छा जताई है।
1: राजनीति में एक पड़ाव आना चाहिए कि आपको स्वतः अवकाश ले लेना चाहिए राजनीति से। तो 2029 में जब चुनाव होगा तो राजनीतिक उम्र हमारी 50 वर्ष की हो जाएगी। तो मेरे मन की इच्छा यही है, जो मैं साफ साफ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो 2029 के चुनाव में मैंने अभी तक मन बनाया है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद के एक

0: मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमीन के अतिक्रमण और उसकी पहचान से जुड़े विवादित सवालों का फैसला रिट याचिका के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में साक्ष्यों की आवश्यकता होती है जिनका निपटारा दीवानी अदालत ही कर सकती है। प्रदेश भाजपा ने किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविनाथ किशोर ने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सरकारी दावे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की मांग की।
1: और राज्य सरकारों के किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है। उनको समय पर खाद बीज भी नहीं मिल रहा है, सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रही है, धानों का जो मूल्य होना मिलना चाहिए वो भी उनको समय पर नहीं मिल रहा है, और ऋण माफी की जो बात किसानों के लिए उन्होंने की थी पिछले बार वो भी सब छलावा साबित हुआ है। तो यह सरकार जो चल रही है पूर्णतः किसान विरोधी है और किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 350 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5 लाख रुपए का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी सीधे सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। साइबर अपराधों की जांच के दौरान फ्रीज या होल्ड किए गए बैंक खातों की समस्याओं से आम जनता और अब व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जीआरएम पोर्टल शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित निर्दोष खाता धारकों को पारदर्शी ऑनलाइन और समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करना है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल airnewsranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने विशेष रेल परिचालन करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने रथ यात्रा 2026 के दौरान पूरी आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चक्रधरपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों के चलने से झारखंड, ओडिशा तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मेदिनीनगर सदर और पाकी थाना क्षेत्र में 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 1 किलोग्राम अफीम, 50 किलो डोडा, 15,450 रुपए नकद, कार, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।
2: ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है जिसके तहत एनडीपीएस के अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। सदर थाना अंतर्गत जो अभियुक्त थे उनके पास से लगभग 750 ग्राम अफीम जब्त हुआ। पाकी थाना क्षेत्र में जांच करने के क्रम में 50 किलोग्राम डोडा की रिकवरी हुई और उसके साथ साथ लगभग 250 ग्राम अफीम भी जब्त, जो इस तस्करी में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है। दुमका जिले में वर्षा का पैटर्न बदल गया है जिससे खरीफ की खेती का जोखिम बढ़ गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दुमका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार शैलेंद्र मोहन ने बताया है कि पिछले 35 सालों में दुमका जिले में वर्षा की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन वर्षा के समय और वितरण में बदलाव आया है। इससे खरीफ के मौसम में पानी की कमी हो रही है। उधर जामताड़ा जिले में अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि कम बारिश को देखते हुए मोटे अनाजों की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है।
3: जिले में 50% से कम बारिश हुई है, बाकी जगहों पे अभी रोपा नहीं हो पा रही। इसी को देखते हुए जिला में कंटीजेंट प्लान के तहत अरहर का और मूंग का वितरण बीज का किया जा रहा है 100% सब्सिडी में और लेंस पैक्स के द्वारा 50% सीड एक्सचेंज, और अभी मिलेट मिशन का प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। उसके द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपया करके मिलता है, किसान 5 एकड़ तक 15,000 रुपया ले सकते हैं।
0: मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार 14 जुलाई से राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश के संकेत हैं, जिससे राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद है। रांची में आयोजित नगड़ी प्रीमियर लीग मुकाबले में कल रॉयल्स की टीम ने टाइटंस को 43 रनों से हरा दिया। रॉयल्स ने 20 ओवरों में 128 रन बनाए, जबकि टाइटंस की पूरी टीम 19 ओवर और 4 गेंद पर 85 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत विभिन्न नदियों और नहरों में 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिया निर्णय, ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ के प्रशासनिक आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। साइबर अपराध के पीड़ित आम लोगों और व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने शुरू किया जीआरएम पोर्टल। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने के दिए संकेत, राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:20 हो रहे हैं और ये वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं टप्पा। कलाकार हैं डॉक्टर अनीता सेन।

0: अनुरंजनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं अतील राजस्थानी की लिखी गजल। यादों के उजालों को सीने से लगा रखना तन्हाई के मौसम में सायों की हुकूमत है। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। फनकार हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

0: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की अमनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आई। आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू कोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
6: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिन्नर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टिना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की रेबिएला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई है अजय अतुल ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं रुस्तम फिल्म से आतिफ असलम को। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतसिर ने और धुन बनाई है अर्को प्रभु मुखर्जी ने।

मलाल, आइए सुनते हैं इस फिल्म से श्रेया घोषाल को। गीत के बोल लिखे हैं प्रशांत इंगोले ने और संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने।

जब वी मेट, यह है फिल्म का नाम। और आइए सुनते हैं इस फिल्म से इरशाद कामिल का लिखा गीत मोहित चौहान की आवाज में। गीत संगीत प्रीतम का है।

अगला गीत हमने लिया है महाराज फिल्म से मुनाली ठाकुर की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और धुन बनाई है सुहेल सेन ने।

मोनाली ठाकुर के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 होने को है।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओटीसी मैदान से पंडरा फ्रेंड्स कॉलोनी तक बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिदिन अपनी दुकान लगाकर आजीविका अर्जित करते हैं, लेकिन उन्हें वर्षों से स्थायी स्थान के अभाव सहित कई प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री के साथ रांची की मेयर रोशनी खलको भी मौजूद थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है।
2: पन्ना की अवैध तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया और कुल 1 kg 95 ग्राम पन्ना के साथ और 2 मोटरसाइकिल और इनके 3 फोन और कुल 2300 रुपए नकद के साथ इनको गिरफ्तार किया गया।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 350 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5,00,000 रुपये का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा सीधे सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित घाघरा गांव से उत्पाद विभाग ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 350 पेटी नकली विदेशी शराब, हजारों नकली लेबल और भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है। उत्पाद अधीक्षक शिव कुमार साहू ने बताया कि यहां अंग्रेजी शराब के कई ब्रांड के नाम पर नकली शराब तैयार की जा रही थी।
3: टीम के द्वारा विधिवत रूप से जब परिसर की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण, कैरामेल, स्पिरिट, ढक्कन, रेपर, विभिन्न ब्रांड का ड्रम जब्त किया गया। 35 लीटर स्पिरिट जब्त किए, तो कुल मिला के लगभग 350 पेटी निर्मित विदेशी शराब और लगभग 4,000 लीटर स्पिरिट, भारी मात्रा में नकली होलोग्राम, खाली बोतल 60 बोरा, कार्टून 1,000 पीस, नकली ढक्कन 25,000 पीस जब्त किए।
1: पूर्वी सिंहभूम जिले के उलीडीह थाना क्षेत्र स्थित राजस्थान भवन के समीप चोरों ने लगातार 2 रातों में करीब 10 दुकानों से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर इन दुकानों के ताले तोड़कर नकदी, कीमती सामान और अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए, जबकि कुछ दुकानों में ताले तोड़े जाने के बावजूद चोरी नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि चोरों ने अधिकतर किराना, मेडिकल, हार्डवेयर और अन्य प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बनाया। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। रांची के मोरहाबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया। बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में सुनेंगे हम फिल्म संगीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: अखियों के झरोखों से आइए सुनते हैं इस फिल्म से हेमलता को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 3:10 होने को है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के लिए।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आप्टे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आप्टे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है, अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
3: वैसे तो मेरा जन्म तमाशा में ही हुआ है, बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया। तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर, इसका ओपनिंग था। वो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवी दिन मैं स्टेज पे गया, ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई, हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोसना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तमाशा निकाला, जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांची चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का पे आया, वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
2: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवे दिन आप स्टेज पे थे, और जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
3: मेरी हाल बहुत बड़ी बात है, तो माँ ने एक साल दूसरे तमाशे में नौकरी की, वो आनंद लोकनाट्य करके है वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला। तो हमने सोचा, हम चारों बहन, की माँ को साथ देना चाहिए, तो मेरी बड़ी बहन अनिता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा। और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने, और पहले ऐसा था सब कुटुंब साथ में रहने का तमाशे में, पहले ऐसे घर भीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में, हमारे सबकी चौथी चौथी एकता हो गई है।
2: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना, आपकी इसके पीछे क्या सोच थी?
3: इसके पीछे ऐसे सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वो मैं सुनने का। तो मैंने बड़ा होके, मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा, मगर बाप के सरीका नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़े बन गया।
2: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे हैं, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
3: बहुत भारी, तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहता, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में। तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होनी थी, पहली छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होने की, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होने की, नवनाथ महाराज की स्टोरी होने की, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आईच काली बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी था वो। और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था, और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
2: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा?

0: से लेके अब तक सोंगाड़ा के पात्र को निभाना भी और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा वो कैसा है?
1: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे। पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दूसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पे चला, तीसरा तमाशा रजवाड़ी वगनाट्य पे चला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पे चला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। अगर मैं गंभीर भूमिका करूं फिर भी लोग हंसते थे, तो वो बहुत अच्छा था।
0: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा और हाँ। ये आपने भी किया कि जो मुद्दे हाँ। सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई। तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
1: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है। जब शिवाजी महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी और शायरी के पेट में से ही तमाशा निकला। तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है। तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी। ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाचा सिखाने का। तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाचा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे ना होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
0: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
1: तमाशा लोगों की जान था। जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे। तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मानुकूली थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाशा है।
0: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे?
1: हाँ।
0: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है और ये दौर ही इन सभी चीजों का है, और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
1: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, और टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाशे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाशा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाशा देखते हैं।
0: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
1: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाशा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है, जब तक तमाशा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
0: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
1: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अभी इंस्ट्रूमेंट बटन से ये बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
0: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
1: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाचे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाचा सुन रहे हैं। मेरा तमाचा तो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां चिट्ठिया बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारी वीडियो निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
0: रघुवीर जी, आपके इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाटों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
1: बहुत बेहतरीन रही है।
0: रघुवीर जी, तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
1: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के आंख पे पूरा बदन ढका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है, ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाचे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
0: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
1: नहीं नहीं, बदला है, एक महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे सारे लोग जो है हमारे साथी तमाचे वाले, उनको भी पूछा, भाई अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है? तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाचा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना बिंगाना बोल करते नहीं, और भीड़ होती थी, भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाचा देख रहे हैं। इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
0: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और वो बच्चे हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
1: होता है।
0: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाचा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाचा भी बदल चुका है, पूरा तमाचा बदला हुआ है, तमाचे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाचे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है, मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है। कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते हैं और अपना नाम भी बहुत कर सकती है। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को देख बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाचे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाचे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगा है।
0: रघुवीर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:23 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रोग्राम रांची मेलोडीज।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: लाज पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची पर वक्त हो चला है उस खूबसूरत सफर का जिसे हम रांची मेलोडीज कहते हैं, और आज के इस मेलोडियस गीतों का सफर एक बार फिर आपकी दोस्त शिल्पी के साथ। आज की मेलोडीज हमने डेडिकेट की है फिल्म जगत के उस वर्सेटाइल एक्टर को जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा और जिन्हें फिल्म जगत में एक शानदार नाम मिला। चलिए आज एक बार फिर उस दौर में चलते हैं जब सिनेमाघरों के बाहर टिकटों के लिए लंबी कतारें लगती थी, जब किसी फिल्म के पोस्टर पर सिर्फ एक नाम सफलता की गारंटी माना जाता था, जब लगातार सिल्वर जुबली मनाना किसी सपने जैसा लगता था। लेकिन एक अभिनेता ने सपने को हकीकत बना दिया और वो सितारा जिसकी सादगी ने दिल जीते, जिसकी आंखों ने बिना शब्दों के मोहब्बत बयां की, जिसकी मुस्कान ने हर किरदार को अपना बना लिया, उन्हें नाम मिला जुबली कुमार। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये थे राजेंद्र कुमार। आइए आज यादों की रील को फिर से चलाते हैं और लौट चलते हैं उस सुनहरे दौर में जब मोहब्बत गीतों में महकती थी और राजेंद्र कुमार की अदाकारी उसे अमर बना देती थी।

कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि उन्हें सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। मेरे महबूब फिल्म ने राजेंद्र कुमार को रोमांटिक नायक के रूप में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उनकी सादगी, उनकी नजाकत और आंखों से अभिनय करने की कला ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन ये शोहरत एक दिन में हासिल नहीं हुई। फिल्मी दुनिया में प्रवेश पाना इतना आसान भी नहीं था। कभी सहायक निर्देशक के रूप में काम किया तो कभी छोटे छोटे किरदार निभाए। संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन मेहनत, धैर्य और लगन ने

राजेंद्र कुमार ने केवल रोमांस ही नहीं बल्कि भावनात्मक भूमिकाओं में भी अपनी अलग पहचान बनाई। दिल एक मंदिर, आरजू, सूरज, तलाश, झुक गया आसमान जैसी फिल्मों ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। कुछ चेहरे समय की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़ते, कुछ मुस्कानें पीढ़ियां बदल जाने के बाद भी दिलों में उसी गर्मजोशी से बसती हैं, और कुछ कलाकार सिर्फ फिल्मों के नायक नहीं होते बल्कि करोड़ों लोगों की यादों का हिस्सा बन जाते हैं, और इन्हीं यादों के सुनहरे पर्दे फिर से खोलते हैं और महसूस करते हैं उस अभिनेता की जादुई दुनिया जिसकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा और जिनके गीत आज भी दिलों की धड़कनों में बसे हैं। तो एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जिसने मोहब्बत को शब्दों से नहीं एहसासों से सजाया।

साठ का दशक राजेंद्र कुमार के नाम रहा। उस दशक का शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जब राजेंद्र कुमार की कोई बड़ी हिट फिल्म ना आई हो। निर्माता उनके साथ फिल्म बनाने को उत्सुक रहते थे क्योंकि उनकी फिल्मों की सफलता लगभग तय ही मानी जाती थी। लेकिन सफलता के बावजूद भी उनका स्वभाव बेहद विनम्र रहा। यही वजह थी कि शोहरत के साथ साथ फिल्म जगत में उन्हें उतना ही सम्मान भी मिला। उन्होंने केवल सफल फिल्में ही नहीं दी बल्कि एक ऐसा दौर रचा जिसे हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय कहा जाता है।

रोमांस हो, दर्द हो, पारिवारिक संवेदनाएं हो या त्याग की मिसाल, हर किरदार में राजेंद्र कुमार ने सच्ची भावनाओं का रंग भरा। राजेंद्र कुमार की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहज अदाकारी। वे अभिनय नहीं करते थे बल्कि अपने किरदार को जीते थे। उनकी आंखों की मासूमियत और संवादों की सादगी दर्शकों के दिलों तक सीधा पहुंचती थी।

समय बदला, फिल्मों का दौर बदला, लेकिन राजेंद्र कुमार का सम्मान कभी कम नहीं हुआ। उनकी मुस्कान, उनका सौम्य व्यक्तित्व और उनकी यादगार फिल्में आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं। उनकी अभिनय यात्रा हमें ये सिखाती है कि प्रतिभा के साथ अगर विनम्रता और मेहनत हो तो सफलता खुद ब खुद

अपना रास्ता बना लेती है। इसी एहसास के साथ आज की मेलोडीज को यहीं समेटते हैं, लेकिन यादों की ये रील चलती रहेगी हर उस दिल में जहां अच्छी फिल्म और मधुर संगीत के लिए जगह है।

आज के मेलोडियस सफर में बस इतना ही। अगली रांची मेलोडीज में कुछ और दिलकश नगमों और खूबसूरत किस्सों के साथ मुखातिब होंगे। अब इस सफर से अपनी दोस्त शिल्पी को दीजिए इजाजत।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित घाघरा गांव से उत्पाद विभाग ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 350 पेटी नकली विदेशी शराब, हजारों नकली लेबल और भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है। रांची के मुरहबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया। बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4:02 हो चुके हैं और ये वक्त है बाल श्रोताओं के कार्यक्रम बाल सभा का।

0: बीज धरा में दब जाता है तब सुंदर पौधा बनता है। मेहनत और धैर्य का साथी हो तो हर सपना पूरा होता है।
1: हार नहीं है अंत सफर का, ये तो नई शुरुआत है। गिरकर फिर जो उठ जाए वही सच्ची सौगात है।
0: हाँ बच्चों, जीवन में जीत मिले तो खुशियों के दीप जलाओ, लेकिन यदि हार मिले तो उससे भी सीख जाओ, क्योंकि जीवन एक यात्रा है बच्चों, और इस सफर में बहुत खुशियों की धूप मिलती है तो कभी कठिनाइयां भी मिलती है।
1: हाँ बच्चों, लेकिन हमेशा याद रखिए, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं, क्योंकि चुनौतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, वो सच्ची मार्गदर्शक और शिक्षक है।
0: हाँ बच्चों, इसलिए चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि डरने के बजाय उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने का अवसर भी देती है।
1: बिल्कुल बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर बार सफल हो, कभी असफलता मिले तो अपनी गलती से सीखें, दोबारा मेहनत करें और विश्वास रखें कि अगली बार सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि असफलता अंत नहीं होती।
0: बच्चों सही कहा भैया ने, इसलिए कठिन समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों से सलाह लें, नियमित अभ्यास भी करते रहें। देखिएगा, खुद पर विश्वास होगा तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी।
1: बच्चों, आप किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़कर देखिए, उनके जीवन में भी कई चुनौतियां आईं, पर उन्होंने उसका सामना किया, बिना डरे डटकर सामना किया, मेहनत की और सत्य की राह अपनाई, फिर उन्हें अपनी मंजिल मिली।
0: जी हाँ बच्चों, दुनिया का लगभग हर सफल व्यक्ति कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार निरंतर प्रयास करते रहे।
1: दीदी ने बिल्कुल सही कहा बच्चों, मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जो बच्चा गिरकर फिर उठना सीख जाता है वही जीवन में बड़ी सफलता हासिल करता है। इसलिए हमेशा साहसी बनिए, मेहनत करिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए।
0: बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध वाक्य हमेशा दोहराइए और उसे याद रखिए कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: तो बच्चों, हमने बात की सपनों की, विश्वास की, आशा की, और आपको पता ही होगा कि 12 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, और आशा दिवस मनाने का मतलब ही है कि हम अपने जीवन से आशा को बाहर न करें, निराश न हो और आशा का हाथ थाम कर ही चलें, एक न एक दिन सफलता हमें अवश्य मिलेगी। और कहा भी जाता है बच्चों, आशा से आकाश थमा है।
0: बच्चों आपको पता ही होगा कि 16 जुलाई को रथ यात्रा भी है, इसमें भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की यात्रा निकलती है, जिसे उड़ीसा पुरी में धूमधाम से मनाया जाता है।
1: हाँ बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, यानी रथ यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ शामिल होते हैं, और वो है भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा, जिसे हमारे शहर रांची के धुरवा में भी निकाली जाती है।
0: हाँ बच्चों, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने रथ यात्रा देखा है? अरे वाह भैया, इतने सारे बच्चों ने रथ यात्रा देखा है, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? क्योंकि बड़े बड़े रथ और खूब सारी भीड़ भी होती है।
1: बच्चों, भारत के ओडिशा राज्य के पूरी शहर में हर साल एक अद्भुत रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीन विशाल सुंदर रथों में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलती हैं। तीनों रथों के अलग अलग नाम होते हैं, नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्प दलन।
0: हाँ भैया, और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए यह यात्रा करते हैं। हजारों लाखों श्रद्धालु मिलकर इन विशाल रथों को मोटी रस्सियों से खींचते हैं, और मान्यता है कि रथ खींचना सेवा, प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है।
1: बच्चों, इस रथ यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति मिलजुल कर भगवान के रथ को खींचता है, और यही हमें प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश भी देती है।
0: बच्चों, भगवान जगन्नाथ नाम का अर्थ भी बहुत प्यारा है। पता है क्या है? उनके नाम का अर्थ है पूरे जगत के नाथ, यानी सभी के भगवान।
1: इस यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है बच्चों कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, क्योंकि मंदिर के भीतर जाने का अवसर सभी को नहीं मिलता। इसलिए इस दिन भगवान सभी के दर्शन के लिए स्वयं नगर भ्रमण के लिए बाहर आते हैं।
0: और बच्चों, क्या अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी मिलकर रथ की रस्सी को खींचते हैं। और यह दृश्य हमें सिखाता है कि भगवान की नजर में सब एक समान है।
1: हाँ बच्चों, तीनों रथ भी बहुत विशेष होते हैं। हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। कुशल कारीगर महीनों की मेहनत से इन्हें तैयार करते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों, सुंदर नक्काशी और ध्वजों से सजे ये रथ बड़े ही मनमोहक लगते हैं।
0: बच्चों, इन रथों को बनाने में किसी लोहे का किल, कांटे या मशीन का उपयोग नहीं होता, बल्कि पारंपरिक जोड़ यानी कि लकड़ी की खुटियों से बनाया जाता है भगवान का यह रथ।
1: हाँ बच्चों, जब लाखों श्रद्धालु जय जगन्नाथ का जय घोष करते हुए रथ खींचते हैं तो पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भर जाता है। ये दृश्य हमें एकता, सहयोग और सेवा को समझाता है।
0: बच्चों, हमारे शहर में ध्रुवा स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी खूब धूमधाम से मेला लगता है, जहां झूले, खिलौने, मिठाइयां और स्थानीय लोग बाजार में अपने सामान भी बनाते हैं और उसे सजाते हैं। और अगर मौका मिले तो इस बार रथ यात्रा को देखने आप जरूर जाइएगा और वहां से कुछ खरीदारी भी करिएगा, क्योंकि स्थानीय जो हमारे कलाकार होते हैं बहुत सारे सामान को बनाते हैं और अपनी मेहनत से वहां तक लाते भी हैं।
1: यानी कि वोकल फॉर लोकल को भी हमें आगे बढ़ाना है बच्चों, लेकिन कुछ सावधानियां भी साथ में हमें बरतनी है, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान काफी भीड़ होती है। इसलिए अपने माता पिता के साथ जाएं, ज्यादा भीड़ वाले स्थान पर ना जाएं और अपने परिवार के साथ रहें या अपने परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर अपने पास जरूर रखें।
0: बिल्कुल, और बड़ों के साथ रहें बच्चों। जैसा कि भैया ने कहा, मेले का आनंद लें पर किसी के साथ भेदभाव न करें, दूसरों की भी सहायता करें, साथ ही अपनी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का सम्मान करें। अच्छी बातों को जीवन में आत्मसात करना सीखें बच्चों।
1: तो बच्चों, हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे की और अब वक्त हो चला है आपको बाल गीत सुनवाने का, यानी कुछ मनोरंजन करवाने का। तो चलिए सुनते हैं ये बाल गीत।

0: वाह, गीत सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे भैया। और अब बच्चों आपकी बारी है, आज आप सब क्या क्या सुनाएंगे हमें?
1: आज हमारे बच्चे तैयार होकर आए हैं दीदी, और वो तो कुछ न कुछ हमें जरूर सुनाएंगे, तो चलिए सुनते हैं उनके मुख से।
0: तो रेहान जी, आप सबसे पहले क्या सुनाएंगी?
2: मैं आनंद विश्वास द्वारा रचित गई पीछे मुड़कर कभी न देखो कविता सुनाने वाली।
0: सुनाइए।
2: पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, उज्जवल कल है तुम्हें बनाना, वर्तमान ना व्यर्थ गवाना, संघर्ष आज तुमको करना है, मेहनत में तुमको खपना है, दिन और रात तुम्हारे अपने, कठिन परिश्रम में तपना है, फौलादी आशाएं लेकर तुम लक्ष्य प्राप्त करते जाना, पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, आगे ही तुम बढ़ते जाना, झंझावाती प्रबल पवन हो तुमको कहीं नहीं रुकना है, बाधाएं हो सिर पर हावी फिर भी तुम्हें नहीं झुकना है, मन में दृढ़ विश्वास लिए संकल्प सिद्ध करते जाना, पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, आगे ही तुम बढ़ते जाना, नदियां कब पीछे मुड़ती हैं, कल कल करती आगे बढ़ती, समय चक्र आगे ही बढ़ता, घड़ी कहां कब उल्टी चलती, पल पल बदल रहा है सब कुछ, संग समय के चलते जाना, पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, आगे ही तुम बढ़ते जाना।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता, आगे ही तुम बढ़ते जाना। आपका नाम क्या है बेटा?
3: मेरा नाम वंशिका है।
1: वंशिका, आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
3: सातवीं कक्षा में।
1: सातवीं में। तो आज अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगी?
3: आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत पराक्रमी और बहादुर है, वो है कर्ण। तो आइए सुनते हैं कहानी कर्ण की।
1: गुड।
3: पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश होके फिर भी हूँ अछूत में, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूतपूत में, कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं, आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी, कृष्ण के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया जिसे सारे वो राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के, सोने को पिघला कर डाला सोन तेरी कंठ में, नीची जाति होके किया वेद का पठन तूने, यही था गुना तेरा, तू सारथी का अंश था, तू क्यों छुपे मेरे पीछे, मैं भी उसी का वंश था, ऊंच नीच किए जर व अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, रथ पे सजाया कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जाति का, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का, इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था, अगर ना दिया होता वो वचन मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था, कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख बस कर्ण कर्ण ही बोलेगा, जाना जिसने मेरा दुख बस कर्ण कर्ण ही बोलेगा।
1: वाह, बहुत सुंदर कविता, और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत भी किया है। आपको पता है कर्ण कौन था?
3: हाँ, कर्ण कुंती माता और सूर्य देव का पुत्र था।
1: और कर्ण के और कौन से भाई, कौन कौन भाई थे?
3: कर्ण के भाई थे कौरव, पांडव।
1: और उनके पांच भाई, पांडव पांच भाई थे ना?
3: हाँ।
1: पांच भाई पांडव कौन कौन थे पता है?
3: हाँ।
1: बताइए।
3: अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर।
1: युधिष्ठिर सबसे बड़े थे।
3: हाँ।
1: लेकिन उनसे भी बड़े कौन थे? कर्ण।
3: ओ
1: कर्ण बड़े थे ना।
4: हाँ,
1: तो आपकी कविता बहुत अच्छी थी। और कर्ण की कहानी जो है वो किस महाकाव्य में मिलती है?
4: महाभारत में।
1: महाभारत में। और महाभारत के रचनाकार कौन है? आपको तो पता है। कौन? वेद व्यास।
4: हाँ,
1: वेद व्यास थे। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और बच्चों को ये कविता जरूर पसंद आई होगी। रेहांशी, आप कुछ और सुनाएंगी कविता? चलिए सुनाइए।
3: यह कविता समय के ऊपर है और इसका विषय समय है। समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। फूल सदा मुस्काते हैं, हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है, दुख सुख भी सहना है। कर्म ही जिसकी रीत है, सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय ही उसका मीत है। धन्यवाद।
5: वाह, बहुत सुंदर कविता। और तुम क्या सुनाना चाहोगी?
4: आप सबको मैं एक कविता रथ यात्रा के ऊपर सुनाना चाहूंगी।
5: अपना नाम बताओ।
4: मेरा नाम वंशिका शांडिल्या है।
5: आज किस क्लास में पढ़ती हो?
4: मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
5: सुनाओ।
3: रथ यात्रा। रथ यात्रा का आया त्योहार, खुशियाँ लाया है अपार। जगन्नाथ जी का सुंदर रथ चल पड़ा पावन पथ, बलभद्र और सुभद्रा संग, गूंजे भक्ति के मधुर रंग। भक्त खींचे रथ की डोर, गूंजे जय जय चारों ओर। फूलों से सजा हर द्वार, गूंजे भक्ति का सत्कार। प्रेम शांति का दे संदेश, रथ यात्रा मिटाए हर कलेश।
5: अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: और चलिए, आपके एक और दोस्त हमारे साथ उपस्थित हैं, तो चलिए सुनते हैं उनकी कविता।
6: नमस्कार, मैं वेदांत राज। शब्दों की दुनिया में आज कुछ ऐसे एहसास लेकर आया हूँ जो सब सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। प्रस्तुत है मेरी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ। ख्वाब ऊंचे हैं तो उड़ान भी ऊंची रख, राह में मुश्किलें हैं तो मुस्कान भी ऊंची रख। मंजिल खुद कदम चूमेगी एक दिन, बस अपने हौसले की पहचान भी ऊंची रख। हम वो नहीं जो हालातों से हार जाएं, हम वो हैं जो तूफानों में भी राह बनाएं। मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम हर कदम पर अपने सपनों को सजाएं। दिए की तरह जलना सीखा है मैंने, अंधेरे से लड़ना सीखा है मैंने। लोग कहते हैं मंजिल बहुत दूर है, पर हर रोज थोड़ा थोड़ा चलना सीखा है मैंने। नजरों में मंजिल और दिल में जुनून रख, मुश्किलें लाख आए फिर भी सुकून रख। उड़ना है अगर आसमान की ऊंचाइयों तक, तो अपने हौसले पर यकीन रख। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, धन्यवाद।
5: बच्चों के मुख से इतने मधुर मधुर बोली में कविताएं सुनकर भैया मन एकदम आनंदित हो गया। क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना भैया, बहुत होशियार हैं और होनहार हैं। मधुर शब्दों, सुंदर भावों और प्यारे संदेशों से हमारे दिल को इन्होंने जीत लिया।
1: बिल्कुल, और हमारे चेहरे पर भी मुस्कान इन्होंने बिखेर दी अपनी कविता सुना करके।
5: हाँ भैया, क्योंकि अच्छी कविता केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि मन में लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ देती है। और आज की कविता भी कुछ ऐसी ही थी।
1: तो चलिए, बच्चों से कविता भी हमने सुन ली और बच्चों को हमने कुछ जानकारी भी दी है। लेकिन अभी हमारे पास और भी जानकारियां हैं, तो अगली जानकारी हम बच्चों को क्या देने वाले हैं दीदी?
5: बच्चों, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। जो बच्चे सपने देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, वही आगे चलकर दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा दीदी। बच्चों, आपने भी सपने देखे होंगे या देखते होंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, और इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कलाकार भी बनना चाहते होंगे। तो बच्चों, सपने जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन को दिशा देते हैं और आगे बढ़ने, सीखने और कुछ नया करने की प्रेरणा भी देते हैं।
5: बहुत सुंदर बात कही भैया ने बच्चों, क्योंकि बड़ा सपना देखने वाला ही बड़ी मंजिल तक पहुँचता है। इसलिए सपने देखने से कभी मत डरिए। चाहे आपका सपना बड़ा हो या छोटा, वह आपके जीवन को नई ऊर्जा देता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने भी कभी न कभी एक सपना जरूर देखा था।
1: हाँ बच्चों, लेकिन केवल सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए लगातार मेहनत भी की। यदि रास्ते में कठिनाइयां आईं, तो उससे हार नहीं मानी, वे गिरकर भी उठे और आगे बढ़ते गए। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।
5: बच्चों याद रखिए, सपनों की राह में कभी कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सपना खत्म हो गया। असफलता आपको अपनी गलतियों से सीखने और पहले से बेहतर बनने का अवसर देती है।
1: हाँ बच्चों, एक बात और, सपनों को पूरा करने के लिए कुछ अच्छी आदतें भी जरूरी है, जैसे समय पर उठना, मन लगाकर पढ़ना, खेलना, अच्छी किताबें पढ़ना, शिक्षक और माता पिता का सम्मान करना तथा हमेशा सकारात्मक सोच रखना। ये छोटी छोटी आदतें हैं ना बच्चों, जो भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव बनती है।
5: बच्चों अपने सपनों की तुलना किसी और के सपनों से मत कीजिए। सपने सबके अलग अलग होते हैं और सबकी प्रतिभाएं भी अलग अलग होती है। कोई बच्चा चित्रकला में अच्छा होता है तो कोई संगीत में, कोई खेल में तो कोई पढ़ाई में। सबकी बौद्धिक क्षमता भी एक समान नहीं होती, इसलिए अपने अंदर की विशेषता और रुचि को पहचानिए, फिर उसी दिशा में आगे बढ़िए बच्चों।
1: देखा ना बच्चों, बड़े सपने देखेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे, असफलता से कभी नहीं डरेंगे
5: और सत्य का साथ देंगे,
1: तो सपने जरूर पूरे होंगे। फिर आपका नाम पूरे परिवार में, समाज में, देश में और आपके विद्यालय में तो रोशन होगा ही।
5: बिल्कुल भैया, और हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। देखिएगा, वो हमारी बातों को मन लगाकर सुन रहे हैं। क्यों बच्चों, हमारी बात मानेंगे ना?
1: तो बच्चों सपने देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करना है, अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है, असफलता से नहीं डरना है और एक न एक दिन आपको सफलता

0: अवश्य मिलेगी। और दीदी, कुछ और जानकारी की बातें हैं हमारे पास बच्चों के लिए?
1: हाँ हाँ भैया, क्योंकि हम हर सप्ताह बच्चों को कोई ना कोई प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, तो आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व है अरुणा ए. आसिफ अली।
0: बच्चों, आज हम भारत की एक ऐसी वीरांगना के बारे में जानेंगे जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना और स्वतंत्रता आंदोलन की महान महिला कहा जाता है, और उनका नाम था अरुणा आसिफ अली।
1: अरुणा आसिफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका, यानी कि जो वर्तमान में हरियाणा है, उसमें हुआ था। उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। वे बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज, साहसी और देशभक्त थीं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक अध्यापिका के रूप में काम भी किया।
0: बच्चों, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, तब अरुणा जी ने देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गईं। जेल में उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई।
1: बच्चों, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उस समय अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे कठिन समय में अरुणा आसिफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर पूरे देश में आजादी की नई उम्मीद जगा दी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद की जाती है। इसके बाद वे कई वर्षों तक भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व भी करती रहीं और अंग्रेजों से कभी नहीं डरी।
0: बच्चों, देश आजाद होने के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का कार्य जारी रखा। वे महिलाओं की शिक्षा, बच्चों के विकास और समाज में समानता के लिए काम करती रहीं। वे दिल्ली की प्रथम महापौर यानी मेयर भी बनी। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उनके निधन के बाद भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया।
1: बच्चों, 29 जुलाई 1996 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका साहस, देशभक्ति और त्याग आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है।
0: तो बच्चों, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश प्रेम सबसे बड़ा धर्म है।
1: बिल्कुल, और अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए।
0: कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए।
1: हाँ बच्चों, शिक्षा, ईमानदारी और सेवा का मार्ग जीवन को महान बनाता है। वीरों की गाथा याद रखें, देश का सदा सम्मान करें। अरुणा जी से सीख यही, साहस से हर काम करें।
0: तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अरुणा आसिफ अली के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने देश, अपने राज्य और अपने समाज की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो बच्चों से हमें विदा लेनी होगी। लेकिन चलते चलते हम बच्चों को बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव कुमार पांडे की थी। तो बच्चों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ कहानियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
2: जय हिंद बच्चों।
3: हमारे बाल श्रोताओं को समर्पित कार्यक्रम बाल सभा यहीं संपन्न हुआ। प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे।

यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब हाजिर है आज हमारी तीसरी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी के साथ। दोस्तों, इस कार्यक्रम उपरांत के बाद 4:35 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5:02 पर हम हाजिर होंगे युवाओं को समर्पित हमारे कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज चर्चा का विषय होगा परिवार, दोस्तों और यादों से मिलने का दिन रविवार। खुद का ख्याल भी रखें और साथ ही साथ बातें होगी इंटरनेशनल डे ऑफ होप की। प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

हिंदी साहित्यिक पत्रिका शद्दल का वक्त होगा शाम के 7:15। आज आप कविताएं सुनेंगे डॉक्टर माया प्रसाद से और कहानी होगी स्मिता की, प्रस्तुति स्वर प्रणव कुमार का और प्रस्तुति प्रभु शरण की होगी। 7:45 पर वक्त रहेगा संथाली समाचार पत्रिका का और रात के 8 बजे से हम हाजिर होंगे 1 से 1 सुपरहिट नगमों के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा के अंतर्गत और 8:15 पर आप सुन सकेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि के 8:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा सुर्खियों में और रात्रि के 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे रवि वार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा धारवाड़ के ए श्रेणी के कलाकार कुमार मकदूर का गायन आज आप सुनेंगे और रात्रि 11:10 पर हमारी मीडियम वेव पर आज की सभा समाप्त हो जाएगी।

दोस्तों, ये थे आज हमारी तीसरी सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सांझ सरगम के साथ।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आप सभी आवाज की दुनिया के दोस्तों का स्वागत है। सुपरहिट नगमों के कार्यक्रम सांझ सरगम में स्वीकार करें अपनी रेडियो हम सफर मौनिता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज इस प्यारे से गीत के साथ।

दिल की हर एक उलझन को लफ्जों में पिरोया है, तेरी चौखट पे बस एक छोटी सी फरियाद लेके आए हैं, है मेरे इश्क।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्मी गीतियों का सफर यहीं समाप्त होता है। तो आप अपनी रेडियो हम सफर मौनिता को आज्ञा दीजिए। दोस्तों, चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अतः आप अपने समय का हर एक क्षण बहुत सोच समझ कर उपयोग करें। नमस्कार।

मीडियम वेव 546 45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना क्षेत्र के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित विधिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मतदाता केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए। कैंपों में गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रह और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। खूंटी जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देसी पिस्तल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है। रांची के मुराहबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया। बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा

0: शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 5:02 हो रहे हैं। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:05 पर आप सुनेंगे हमारे फौजी भाइयों को संबोधित कार्यक्रम जय भारती। शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इसमें आज चर्चा का विषय होगा बरसात के मौसम में स्वस्थ कैसे रहें। मनोरंजन कीजिएगा उड़िया लोकगीत से सुरोभी पान और साथियों के स्वरों में। आज की भेंटवार्ता का विषय होगा रोगरोधी किस्मों के बीजों के इस्तेमाल से लाभ। भेंटवार्ताकार होंगे दयानंद कुंभकार, उनसे बातें कर रहे होंगे कमलेंदु महतो। साथ ही आप उड़ाव लोकगीत का आनंद भी ले सकेंगे रमेश लकड़ा और साथियों के स्वरों में। वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी आप सुन सकेंगे। श्रोताओं, शाम 6:00 मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यह उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। इसमें मनोरंजन कीजिएगा हेरो गीत से सुनीता बोयपाई और साथियों के स्वरों में। कविता भी आप सुन सकेंगे कवि सोनू हिस्सा, और साथ ही आंधी गीत भी आप सुन सकेंगे रजनी चातर और साथियों के स्वरों में। जानकारी की बातें होंगी और चर्चा के अंतर्गत कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा की जाएगी श्रोताओं। उसके बाद शाम 6:30 पर सुनेगा कार्यक्रम विविधा। शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं, शाम 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी रांची से। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद शाम 7:15 पर। शाम 8:00 सुनिएगा फरमाइशी गीतों का एक और कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:00। उसके बाद आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 से। श्रोताओं, हमारे केंद्र से गजलों का प्रोग्राम महफिल होगा रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। उसके बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों का प्रसारण होगा रात्रि 11:00। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर, और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है हमारी फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम में सभी फौजी भाइयों का और हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरा यानी उदय का प्यार भरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम इस देशभक्ति गीत से।

फौजी भाइयों, ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था बॉर्डर। और अब आइए सुनते हैं एक और देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत। और भाई सुनते हैं अगला गीत, फिल्म का नाम है नया दौर। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, बालवीर और साथियों की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, ये था फिल्म केसरी का गीत बी प्राग की आवाज़ में। और इसी के साथ ही हमारा आज का जय भारती कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हमारे फौजी भाइयों को एक बार पुनः हमारी तरफ से नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कृषक भाइयों, बरसात का महीना आ गया है और कभी कभार अचानक बारिश तथा लगातार बारिश, इसके साथ साथ वज्रपात, आंधी तूफान, जिससे अक्सर हम सभी नहीं चाहते हुए भी भींग जाते हैं और विशेष करके वज्रपात के चपेट में आकर के दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए किसान भाई बहनों, ऐसे मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी भींगने से सर्दी, खांसी, जुकाम

वो भी फ्लाइट मोड या फिर स्विच ऑफ करके रखें कुछ समय के लिए। तो इस तरह के हम जो सावधानियां बरतेंगे तो हम सुरक्षित रह पाएंगे बरसात के दिनों में। और किसान भाइयों, इन दिनों हमें विशेष करके पेयजल, जहाँ से भी हम पानी पीते हैं, उन्हें उबाल कर और ठंड करके पिए, क्योंकि पेयजल से भी काफ़ी सारे बीमारियाँ होती हैं हमारे स्वास्थ्य पर, और बरसात के दिनों में जल का दूषित होना आम बात है। इसीलिए पानी हम अवश्य उबालें और गर्म पानी पिए, इसके साथ साथ उनको हम दूषित होने से बचाएं, छान करके पिए, और कई तरह के ऐसे उपाय हैं जिसे हम पेयजल को स्वच्छ बना सकते हैं। इसके साथ साथ आसपास की जो सफाई है ये भी जरूर करें, क्योंकि मक्खी मच्छर ज़्यादा फैलते हैं और मच्छर ज़्यादा फैलने से कई तरह के बीमारियां भी आती हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए हमें आसपास की सफाई, खुले बर्तन, टायर या जो भी जहाँ भी पानी जमते हों, इन सभी को आप निपटारा करें, अलग जगह पर रखें ताकि आसपास में मक्खी मच्छर ना हों। और इसके साथ ये भी जरूर करें कि आप जो भी खाते हैं दैनिक भोजन में, हमेशा ताज़ा हो, गर्म हो, बासी भोजन बिल्कुल ना करें। तो किसान भाइयों, इन सभी बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो बरसात के दिनों में विशेष करके हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और कोई भी काम को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे बीच हैं। और इन दिनों हम धान की खेती के साथ साथ कई प्रकार के सब्जियों की खेती और विशेष करके खेतों में ही अपना समय गुजरता है, तो हमें स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी हम इन कामों को कर पाएंगे। और किसान भाई बहनों, समय के अनुसार खान पान होना चाहिए, साफ सफाई, नहाना धोना, सोना जागना, सब कुछ समय के अनुसार करें, और इस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को हमेशा सही बनाए रखेंगे। तो इन बातों को विराम देते हुए थोड़ा मनोरंजन किया जाए और सुनते हैं एक प्यारा सा उड़िया लोकगीत, सुरभि पान एवं साथियों के स्वर में।

तो किसान भाइयों, अभी हम आनंद ले रहे थे उड़िया लोकगीत का। कलाकार थे सुरभि पान एवं साथीगण। और किसान भाइयों, बरसात के दिनों में हम कई प्रकार के सब्जी और अनाज फसल भी लगाते हैं। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई जो भी हैं, अलग अलग प्रकार के बीजों का इस्तेमाल भी करते हैं। वर्तमान में पुराने देसी किस्म के बीजों के अलावा जो उन्नत किस्म के होते हैं, जिसमें पैदावार बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसे बीजों का इस्तेमाल प्राय सभी किसान भाई करने लगे हैं, चाहे अनाज फसल हो या फिर सब्जी फसल। तो इनमें से जो देसी किस्में हैं या फिर पुराने बीज जो हैं उनमें और अभी उन्नत किस्मों में काफ़ी अंतर भी है। इनमें बहुत ज़्यादा पैदावार के साथ साथ इसमें बीमारियां भी कम लगते हैं, इसीलिए रोगरोधी किस्मों के बीजों का इस्तेमाल करने से हमारे किसान भाई किस तरह से अभी अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर के आज हमारे बीच में हैं एक प्रबुद्ध कृषक दयानंद कुंभकार जी, जो हमारे बीच जानकारी दे रहे हैं कि रोगरोधी किस्मों के जो भी बीज हैं उन्हें लगा करके हम किस तरह से अपना मुनाफा कमा सकते हैं।

0: भाई आज के कार्यक्रम में आज हम मिलते हैं एक प्रबुद्ध और सफल कृषक। आज हमारे बीच में है कुंभकार जी, जो साधारणतः हम देखते हैं अपने खेतीबाड़ी के क्षेत्र में सामान्य बीज और रोगरोधी किस्मों के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो दयानंद जी, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि जानते हैं हम सभी कि रोगरोधी किस्मों को लगाने से हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ है और सामान्य बीज की तुलना में दोनों में कितना अंतर आप देख पाते हैं।
1: जी नमस्कार कमलेंद्र जी।
0: हाँ,
1: जैसे कि हमारे किसान भाई साधारणतः जो साधारण किस्म के बीज हैं, इनका उपयोग थोड़ा ज्यादा करते हैं।
0: हाँ,
1: और उपचारित बीज हुआ या ग्राफ्टेड पौधे जो नर्सरी से हम लोग को प्राप्त होती है, तो इन सब बीजों का बहुत ही कम प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ये महंगा है।
0: हाँ, महंगा तो होता ही है।
1: तो इसमें काफी अंतर होता है साधारण किस्म के जो बीज और उपचारित किया हुआ बीज दोनों।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो उपचारित बीज जो होते हैं इनका खेती फायदेमंद होता है, और साधारण किस्म के जो बीज है ये तो साधारण होते हैं, जो हम लोग का साधारण उपज भी साधारण ही होता है।
0: हाँ, और कोई निश्चित नहीं है कि ये अगले दिन तक रहेंगे, कभी सड़ते हैं, मरते भी हैं, मुरझा जाते हैं।
1: हाँ, पौधे भी उस टाइप से ग्रोथ नहीं करेंगे जैसे कि उपचारित बीज करते हैं।
0: हाँ,
1: तो इसीलिए हमारे जितने भी किसान भाई हैं, हम सभी को खेती में हमेशा रोगरोधी बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: ताकि खेती से अधिक लाभ लिया जा सके।
0: हाँ, और अधिकतर किसान कहते हैं कि नहीं, ये बीज जो है बहुत महंगा है और हम कैसे इतना अधिक लगा पाएंगे, तो ये उसका मात्रा से ज्यादा उसका जो गुणवत्ता है उसको देखना चाहिए उन्हें, ताकि हम कम पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा हमको उसमें पैदावार मिल सके।
1: जी जी जी। देखिए, उपचारित बीज या हाइब्रिड बीज जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर ग्राफ्टेड जो पौधे तैयार हम लोग को मिलते हैं नर्सरी से, कोई अच्छे नर्सरी से वो मिल जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: वो चाहे टमाटर हो, बैंगन हो, हर तरह के आजकल ग्राफ्टेड पौधे आ जाते हैं। तो अब इसमें जैसे मान के अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए टमाटर का ही खेती करते किसान भाई, तो टमाटर का खेती अगर हम लोग ग्राफ्टेड नर्सरी से प्राप्त ग्राफ्टेड पौधे को लगाते हैं, तो हम जो साधारण किस्म के बीज लगाते हैं खेत में, एक पौधे से हम लोग को लगभग 4 से 6 किलो तक का बीज आपका
0: फल मिलता है।
1: लेकिन वही उसी जगह पर अगर हम लोग ग्राफ्टेड जो पौधे होते हैं, इनको अगर हम लोग रोपाई करते हैं, तो एक पौधा से लगभग 20 केजी।
0: अच्छा अच्छा।
1: टमाटर हम लोग प्राप्त कर सकते
0: हैं। काफी अंतर है दोनों में।
1: हाँ, बहुत अंतर है।
0: हाँ,
1: और मेहनत कभी कमी।
0: हाँ, मेहनत कभी कमी, एक ही बार लगा दिए बस, उसका उतना ज्यादा ये करना भी नहीं।
1: ग्राफ्टेड पौधे अगर किसान भाई लगाते हैं तो कम संख्या में लगाएं।
0: हाँ, सही दूरी बनाते हुए उसको लगाना है।
1: हाँ, सही दूरी बनाते हुए कम संख्या में लगाएं, और उससे भी साधारण किस्म के जो बीज है उसके उस पौधे के मुकाबले इसमें उत्पादन ज्यादा होता है।
0: उत्पादन, हाँ सही बात है। तो इस तरह के बीज तो चाहे सब्जी हो या अनाज हो या फिर कोई भी मोटे अनाज, सब प्रकार के मिलते हैं।
1: सब मोटे अनाज, धान है चाहे गेहूं है, सब तरह के बीज में आते हैं।
0: अच्छा,
1: जिसको हम लोग साधारणतया हम लोग अपना भाषा में हाइब्रिड बीज बोलते हैं। तो ये जो रोगरोधी बीज है, तो इनका एक गुण होता है, इनमें फूफन, वायरस, जीवाणु, विषाणु और कीटों के साथ साथ अन्य किसी भी प्रकार के
0: मतलब बीमारी कम लगेंगे।
1: बीमारी कम लगेंगे, लड़ने की क्षमता अधिक होती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: अगर थोड़ा मोड़ा कोई बीमारी लगता भी है तो उससे पौधा हम लोग को प्रभावित नहीं होता है।
0: नहीं होता। तो जिससे हमारे किसान भाई को जो भी कीटनाशक दवा खरीदने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उससे भी बच जाते हैं।
1: उससे भी बच जाएंगे, कम खर्चा। फिर हम लोग जो मेहनत करेंगे
0: वो भी बेकार नहीं जाएगा।
1: नहीं, और मेहनत भी कम करना पड़ेगा।
0: कम करना पड़ेगा। सही बात है।
1: दूसरा बात है कि अगर हम लोग रोगरोधी पौधा को लगाते हैं तो कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग कम करेंगे। जिससे हमारा जो वातावरण है, जो प्रदूषण,
0: हाँ हाँ ये
1: इसमें भी
0: तो
1: कमी
0: रहेगा।
1: आएगी।
0: हाँ हाँ सही बात है।
1: तो एक तरह से अगर हम लोग रोगरोधी बीजों से जो तैयार किया है पौधा का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब है सीधा कि हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा भी करते हैं।
0: पर्यावरण का सुरक्षा भी, अपना स्वास्थ्य का भी सुरक्षा हो रहा है, मतलब हर प्रकार से यह लाभदायक ही है।
1: जी। और जैसे आजकल देखते हैं बहुत सारे फसलों में,
0: हाँ
1: जैसे टमाटर में खासकर अब हम लोग देखेंगे झुलसा रोग,
0: हाँ
1: झुलसा रोग आता है, पत्ता झुलस गया,
0: झुलस गया। हाँ
1: या मुरड़ रोग जिसको बोलते हैं,
0: हाँ
1: पत्ता
0: सिकुड़
1: थोड़ा
0: जाते
1: मुड़
0: हैं।
1: गया, सिकुड़ जाता है, उसका जो विकास है सही से नहीं हो पाता है।
0: हाँ
1: जैसे कोई किसान भाई अगर गन्ना लगाते हैं तो सड़ने गलने की समस्या उसमें खासकर पाया जाता है।
0: अच्छा अच्छा हाँ
1: धान में एक है कि वो धान

0: पकने से पहले हल्का हो जाएगा, जल जाएगा इस टाइप से।
1: हाँ,
0: तो ये सब से भी हम लोग बच सकते हैं,
1: बच सकते
0: अगर हाँ रोगरोधी बीजों का अगर हम लोग
1: इस्तेमाल
0: करके। जी
1: सही बात है। तो साधारणतः हमारे किसान भाई जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो ऐसे बीजों का ही चयन करना चाहिए और अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनका जो मेहनत है, पैसे जो खर्च कर रहे हैं और जो भी कीटनाशक दवाओं में खर्च करते हैं, इन सब से हम बच सके, है ना।
0: हाँ हाँ, एक तरह से कहा जाए तो रोगरोधी बीज बीजों से जो हम लोग खेती करेंगे तो एक फायदा का खेती होगा।
1: हाँ सही बात है,
0: उसमें नुकसान का गुंजाइश बहुत ही कम रहता है,
1: बहुत कम रहता है।
0: जैसे रोगरोधी बीजों में कुछ अच्छा किस्म जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे धान में VNR 2245, अगर कोई किसान भाई बासमती लगाते हैं तो बासमती का 11-21।
1: अच्छा अच्छा,
0: धान कटाई के बाद अभी गेहूं बुआई जब शुरू हो HD 2967।
1: अच्छा,
0: या फिर करण वंदना DBW 187। और मान लीजिए कोई किसान भाई अगर मिर्चा लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो गौरी G4 या नामधारी NS 3572, इसका चयन करके लगा सकते हैं।
1: अच्छा, जो ये सब किस्में हैं हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं और रोगरोधी हैं।
0: जी जी,
1: इसका इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी
1: तो दयानंद जी, जैसे कि हमारे किसान भाई बहुत सारे सुनते हुए अपने मन में सोचते होंगे कि ये सब बीज कहाँ से प्राप्त करें ताकि हमें धोखा ना हो और सही कीमत के साथ साथ सही बीज भी हमें प्राप्त हो, तो इसके लिए कोई प्रमाणित बीज भंडार ही तो जाना होगा ना कम से कम।
0: हाँ, प्रमाणित बीज भंडार ही जाना सबसे सही रहता है। तो अगर बीज लेना है तो कोई रजिस्टर्ड प्रमाणित बीज भंडार ही जाके वहाँ जो एक्सपायरी डेट होता है
1: वो सब भी देख लेना,
0: सारा चीज का ध्यान रखते हुए बीज को लेना चाहिए।
1: पैकेट में निर्देशित जो भी कब भरा हुआ था, इसका कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब भलीभांति देख लेना चाहिए ताकि बाद में धोखा ना हो।
0: कभी कभी ऐसा होता है किसान भाइयों के साथ कि किसान भाई सोचते हैं हम हाइब्रिड बीज ले रहे हैं, रोगरोधी बीज ले रहे हैं।
1: अच्छा,
0: और जो डेट होता है, अंतिम तिथि जो लगाने का होता है, इसको देखे बिना ही बस हाइब्रिड ले रहे हैं यही सोच के लाके फिर किसान भाई अपने खेत में लगा भी देते हैं।
1: अच्छा अच्छा, हाँ।
0: तो इसमें क्या होता है कि अगर उस टाइप से आप बीज लगाते हैं, तैयार बीज अगर लगाते हैं, तो उसमें पौधा आपका बहुत अच्छा ग्रोथ भी करेगा, होगा भी।
1: अच्छा,
0: लेकिन फलन जो है उसमें नहीं हो पाएगा अच्छा से।
1: मैंने पौधा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा लेकिन उसका जो उपज क्षमता है वो घट जाएगा, मैंने कम पैदावार
0: उपज क्षमता एकदम नहीं होगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: फिर अगर उपज कुछ होता भी है
1: तो कम मात्रा में होगा,
0: कम मात्रा में होगा।
1: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो इस तरह से हमेशा नए बीजों का ही और सही सलामत देख कर ही खरीदना चाहिए।
0: जी जी जी। और अभी जैसे अगर कोई किसान भाई गोभी लगाने का सोचते हैं,
1: हाँ,
0: शुरुआत में किसान भाइयों को अच्छा दाम भी मिलता है,
1: हाँ,
0: तो शुरुआत में अगर लगाना चाहेंगे तो एक आता है माधुरी, जो रोगरोधी बीज ही है वो भी, या फिर सकाटा वाइट करके आता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: तो इनका चयन कर सकते हैं किसान भाई। और किसान भाइयों को ये भी चाहिए, जैसे आप अगर रोगरोधी बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो पौधे से पौधे का
1: दूरी बनाना भी जरूरी है।
0: हाँ, वो बहुत जरूरी है ताकि पौधे को समुचित रूप से सूरज का प्रकाश,
1: हवा पर्याप्त मिले उसमें,
0: हवा ये सब सारा चीज पर्याप्त मिल पाए।
1: अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत सारे किसान भाई मैंने जानकारी के अभाव में बहुत सामने सामने लगा देते हैं और बड़ा होने के पश्चात तो वहाँ आपस में जगह ही नहीं बनता है कि उसको बढ़ने के लिए, और मिट्टी तक नहीं दिखता है खेत का, पैर रखने का जगह तक नहीं मिलता है।
0: जी जी जी, ऐसा स्थिति में क्या होता है, हम जो खाद डालते हैं खाद में भी छीना चटकी हो जाता है पौधे पौधे में।
1: हाँ, होता ही है।
0: इसलिए कभी कभी ऐसा होता है अगर सामने सामने बहुत पास पास में लगाए हैं तो देखिएगा एक पौधा बड़ा हो गया दूसरा पौधा छोटा हो गया।
1: हाँ, अक्सर होता ही है ऐसा।
0: इसलिए हमेशा इस बात का किसान भाइयों को ख्याल रखना चाहिए कि पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, कतार से कतार, ये सही हो,
1: सही होना चाहिए। हाँ अच्छा, तो दयानंद जी आपने हमारे किसान भाइयों को रोगरोधी किस्मों के लगाने के फायदे और किस तरह से लगानी चाहिए, बीजों को हम कहाँ से प्राप्त करें, ये सभी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर
0: जोहर।
2: तो किसान भाइयों, अभी हम मिल रहे थे हमारे एक प्रबुद्ध कृषक दयानंद कुंभकार जी के साथ और जानकारी दे रहे थे रोगरोधी किस्मों के बीजों को हम लगाते हैं तो इससे हमारा कितना उपज प्राप्त होता है और देसी बीजों की तुलना में काफ़ी अधिक मुनाफा भी मिलता है। तो इस तरह से आप भी अपने खेतों में जो भी बीज लगाते हैं, जो भी अनाज हो या फिर सब्जी का बीज हो, वो आप अच्छे किस्मों का चयन करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, कम क्षेत्र में अधिक पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, अभी बहुत समय है और इन दिनों हम देखते हैं कि बरसात के समय में विशेष करके जो भी बागवानी किए हैं, फलों की बागवानी हो या फिर इमारती पौधों की बागवानी किए हों, तो उनमें आप ग्राफ्टिंग या फिर कॉलम विधि अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे नमी वाले क्षेत्र में बरसात के दिनों में ये संभव है। तो आप कभी भी, चाहे प्रखंड स्तर से हो या फिर जिले स्तर से हो या फिर कोई भी प्रशिक्षण केंद्र में हो, प्रशिक्षण अवश्य लें। किसानों के लिए निशुल्क और पर्याप्त जानकारी मिलती है, तभी आप कोई भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है कोई भी काम को आरंभ करने के लिए। तो किसान भाइयों, इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से और उन्नत तरीके से खेती बाड़ी को अंजाम देंगे। और इसके पश्चात हम पुनः मनोरंजन की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं प्यारा सा उड़ाव लोकगीत।

तो किसान भाइयों, इसी उड़ान लोकगीत के साथ ही आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप कमलेंदु को विदा दे, सभी को पुनः एक बार जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु मंदिर की व्यवस्थाओं और पूजा पद्धति से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि संभावित सीईओ की भूमिका और अधिकार तय करना ट्रस्ट का विषय है। वहीं कथित चढ़ावा गबन के आरोपों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय ने ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में स्वर्ण व्यवसायियों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्री मरांडी ने गोड्डा और गुमला जिले में हाल की लूट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार पर सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित विधिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आज जापान कराटे एसोसिएशन जेकेए इंडिया झारखंड की ओर से कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन किया गया। शिविर में चाईबासा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 150 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 6:02 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ठीक है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदय का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और समय निकालकर हमारा कार्यक्रम भी आप ज़रूर सुन रहे होंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में। आज जान

बारहवीं कक्षा के लिए आईआईटी चेन्नई में स्थित वनावाणी विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उनके पिता रघुनाथ पिचाई ब्रिटिश कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में वरिष्ठ इलेक्ट्रिक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे और कंपनी के इलेक्ट्रिकल पुर्जे बनाने वाली एक इकाई का प्रबंधन देखते थे। श्रोताओं, सुंदर पिचाई जी का बचपन मद्रास के अशोक नगर में बीता। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर की एक कॉलेज, जी हाँ श्रोताओं, स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई जी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से मटेरियल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग एमएस की डिग्री प्राप्त की और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल से एमबीए की शिक्षा पूरी की। श्रोताओं, अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत सुंदर पिचाई ने अप्लाइड मटेरियल्स में इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कार्य करना प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में कार्य किया। सुंदर पिचाई जी का गूगल में सफ़र 2004 से शुरू हुआ, जहां वे गूगल के उत्पाद जैसे गूगल क्रोम, क्रोम ओएस पर कार्य करने लगे। कुछ समय बाद वे गूगल ड्राइव परियोजना का भी हिस्सा बने। पिचाई जी ने गूगल में रहते हुए अपनी योग्यता का बखूबी प्रदर्शन किया और वे गूगल के कुछ प्रचलित उत्पाद जैसे जीमेल और गूगल मानचित्र आदि के भी अहम हिस्सा बन गए। इस सब के बाद 19 नवंबर 2009 में क्रोम ओएस और क्रोम बुक आदि उत्पादों की जांच करने का कार्य किया और 2011 में इन उत्पादों को सार्वजनिक भी किया। श्रोताओं, 20 मई 2010 में सुंदर पिचाई जी ने गूगल के नए वीडियो कोडेक VP8 के मुक्त स्रोत का भी ऐलान किया। गूगल के इस वीडियो कोडेक ने एक नया वीडियो फॉर्मेट प्रस्तुत किया। सुंदर पिचाई 13 मार्च 2013 गूगल की प्रसिद्ध परियोजना एंड्रॉयड से जुड़े, जिसका नेतृत्व पहले एंडी रूबिन करते थे। अप्रैल 2011 से 30 जुलाई 2013 तक वे जीवा सॉफ्टवेयर के निर्देशक बने। सुंदर पिचाई का नाम 2014 के शुरुआती दौर में माइक्रोसॉफ्ट के CEO के रूप में भी लिया जाने लगा था, लेकिन 2015 में वे गूगल के CEO के रूप में दुनिया के सामने आए। श्रोताओं, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ें, आइए एक जानकारी हम जो है आपको देना चाहेंगे मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। श्रोताओं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता है, ये प्यार और देख रेख से भी बनता है। श्रोताओं, हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। श्रोताओं, ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। श्रोताओं, आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। श्रोताओं, ये गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहाँ बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में न चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के यानी कि बच्चे का पालक बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम

35 वर्ष तथा दोनों की सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। श्रोताओं, अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, तो जो श्रोताओं, बालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। श्रोताओं, परिवार का जो है, परिवार हर बच्चे का अधिकार होता है, तो इस ओर हमें ज़रूर कदम बढ़ाने चाहिए। ज़रूरतमंद बच्चों की ओर हाथ बढ़ाएं और उन्हें एक अच्छा भविष्य हम दे सकते हैं। श्रोताओं, अधिक जानकारी हेतु बाल जो है जिला बाल संरक्षण इकाई के जो है संपर्क सूत्र पर संपर्क किया जा सकता है। संपर्क सूत्र इस प्रकार है, 9955131364 और 9090700489। संपर्क सूत्र एक बार फिर नोट कर ले, 9955131364 और 9090700489। या आप जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चायबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये जानकारी समाप्त हुई। और अब श्रोताओं, आइए बात करते हैं हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण जी के बारे में। उनका भी आज जन्मदिन है। श्रोताओं, उनका पूरा नाम था प्राण कृष्ण सिकंद। उनका जन्म आज ही के दिन यानी माफ कीजिएगा श्रोताओं, आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान इलाके में। एक रईस परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन में उनका नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। उनका परिवार बेहद समृद्ध था। प्राण जी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। बड़े होकर उनका फोटोग्राफर बनने का इरादा था। सन 1940 में जब मोहम्मद वली जी ने पहली बार पान की दुकान पर प्राण को देखा तो उन्हें फिल्मों में उतारने की सोची और एक पंजाबी फिल्म यमला जट बनाई जो बेहद सफल रही। इसके बाद प्राण जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 1947 तक वे 20 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे और एक हीरो की छवि के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। हालांकि लोग उन्हें खलनायक के रूप में देखना ज़्यादा पसंद करते थे। अभिनेता प्राण को दशकों तक बुरे आदमी यानी कि खलनायक के तौर पर जाना जाता रहा और ऐसा हो भी क्यों ना, पर्दे पर उनकी विकरालता इतनी जीवंत थी कि लोग उसे ही उसकी वास्तविक छवि मानते रहे। लेकिन फिल्मी पर्दे से इतर प्राण जी असल जिंदगी में बेहद सरल, ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। समाज सेवा और सबसे अच्छा व्यवहार करना उनका गुण था। श्रोताओं, प्राण जी की शुरुआती फिल्में हों या बाद की फिल्में, उन्होंने अपने आप को कभी दोहराया नहीं। उन्होंने अपने हर किरदार के साथ पूरी ईमानदारी से न्याय किया। फिर चाहे भूमिका छोटी हो या बड़ी, उन्होंने समानता ही रखी। प्राण जी को सबसे बड़ी सफलता 1956 में हलाकू फिल्म से मिली, जिसमें उन्होंने डकैत हलाकू का सशक्त किरदार निभाया था। प्राण जी ने राज कपूर निर्मित निर्देशित जिस देश में गंगा बहती है में राका डाकू की भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने केवल अपनी आंखों से ही क्रूरता जाहिर कर दी थी। कभी ऐसा वक्त था जब हर फिल्म में प्राण जी जो है नजर आते थे खलनायक के रूप में। उनके इस रूप को परिवर्तित किया था भारत कुमार यानी मनोज कुमार जी ने।
जिन्होंने अपनी निर्मित निर्देशित पहली फिल्म उपकार में उन्हें मलंग बाबा का रोल दिया, जिसमें वे अपाहिज की भूमिका में थे। भूमिका कुछ छोटी जरूर थी, लेकिन थी बहुत दमदार। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उनको पुरस्कृत भी किया गया, उन पर फिल्माया गया। कस्मे वादे, प्यार वफा, सब बातें हैं आज भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है। भूले भटके जब कभी यह गीत बजता हुआ कानों को सुनाई देता है तो तुरंत याद आते हैं प्राण जी। ऐसा ही कुछ जो है श्रोताओं, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज जानते हैं। श्रोताओं, जब प्राण जी 19 वर्ष के थे तो उन्होंने दलसुख पंचोली के निर्देशन में बनी पंजाबी फिल्म यमला जट में हीरो की भूमिका अदा की थी। उन्हें यह फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली जी ने उस समय ऑफर की थी जब वे 1939 में लाहौर में एक पान की दुकान के बाहर खड़े थे। उन्हें इस भूमिका के लिए 50 रुपये दिए गए थे। श्रोता, उन्हें शायरी और फोटोग्राफी का भी शौक था और उन्हें खेल से भी काफ़ी प्रेम था। तो श्रोताओं, इस महान अदाकार ने दुनिया को आज ही के दिन यानी कि 12 जुलाई 2013 को अलविदा कहा। फिल्म जगत और जितने भी उनके प्रशंसक हैं उन्हें ज़रूर हमेशा याद रखेंगे। श्रोताओं, इन दिनों आप सभी जानते हैं कि फीफा का मुख जो है खुमार चारों ओर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। श्रोताओं, फुटबॉल पूरी दुनिया में एक जाना माना खेल है। फुटबॉल का खेल खिलाड़ियों में एक सही सोच, टीम भावना और मुकाबला करने की भावना पैदा करता है। इसे दुनिया के सबसे अनुशासित खेलों में से एक माना जाता है। फुटबॉल सभी देशों में काफ़ी प्रसिद्ध है। श्रोताओं, इस बार जो है फीफा वर्ल्ड कप जो है फीफा पुरुष विश्व कप का जो 23वां संस्करण है वो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। श्रोताओं, अब इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम विविधा में। और भाई सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, उम्मीद है आपने इस गीत का जो है भरपूर आनंद लिया होगा। और अब कार्यक्रम के अंत में जाते जाते आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जो फीफा से जुड़ी हुई है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि विजेता टीम को मिलने वाली असली फीफा विश्व कप ट्रॉफी हमेशा फीफा के पास ही रहती है। जश्न के बाद असली ट्रॉफी वापस ले ली जाती है और विजेता टीम को केवल असली जैसी दिखने वाली एक विशेष गोल्ड प्लेटेड रेप्लिका यानी प्रतिकृति सौंपी जाती है। श्रोताओं, ब्राज़ील फुटबॉल इतिहास की सबसे सफल टीम है जिसने 5 बार विश्व कप जीता है। सबसे खास बात यह है कि 1930 में पहले विश्व कप से लेकर अब तक ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिसने हर एक फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया है। श्रोताओं, भारत ने सन 1950 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। लोकप्रिय मान्यता के विपरीत कि भारतीय टीम नंगे पैर खेलती थी, इसलिए उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जो है असली कारण उस समय फीफा काफ़ी महंगा हुआ करता था। श्रोताओं, महान फुटबॉलर पेले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार फीफा विश्व कप जीता है, सन 1958 में, सन 1962 और सन 1970। इसके अलावा वे इतिहास में सबसे कम उम्र में विश्व कप में गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं।

श्रोताओं, टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस के नाम है, जिन्होंने कुल 16 गोल किए। तो श्रोताओं, उम्मीद है ये रोचक तथ्य जानकर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप भी रोमांचित हुए होंगे। श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का ये विविधा कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी रांची से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कदे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्र सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के जरिए जागरूकता बढ़ाने पर दिया बल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा, गांव और पंचायतों को मजबूत करना राज्य सरकार का है लक्ष्य, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जारी है कोशिश। प्रदेश भाजपा ने राज्य में चल रहे कौशल विकास मिशन में अनियमितता का लगाया आरोप। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भुगतान का दावा, न्यायिक जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता, विपक्ष पर किया पलटवार। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए शुरू की 6 महीने की माफी योजना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि देश के 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 9 करोड़ लाभार्थियों तक पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के जरिए श्री अन्न और स्थानीय खान पान को बढ़ावा देकर महिलाओं और बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: महिला बाल विकास विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। 14 लाख केंद्रों में लगभग 9 करोड़ के आसपास हमारे लाभार्थी हैं, जो 3 से 6 साल के हमारे बच्चे हैं। बच्चे को जब वो आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं तो उनको पोषण के साथ साथ उनको स्कूल के लिए रेडी करना, ये मुख्य लक्ष्य है।
1: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि विकास का उद्देश्य केवल शहरों का विस्तार नहीं, बल्कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक अवसर, सुविधा और सम्मान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर गांव और पंचायत को सशक्त बनाकर समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पर मंत्री ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण समान रूप तक पहुंचाना है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु मंदिर की व्यवस्थाओं और पूजा पद्धति से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि संभावित सीईओ की भूमिका और अधिकार तय करना ट्रस्ट का विषय है। वहीं कथित चढ़ावा गबन के आरोपों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय ने ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।
3: ये एक बड़ा सवाल है कि जो आस्था के तौर पे मंदिरों में दान देते हैं ब्लाइंड तौर पे बिना बताए हुए डाल है, उन सारे चीजों का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तिरुपति इतना बड़ा मंदिर है, कभी आज तक ये बात नहीं आया हुआ।
1: प्रदेश भाजपा ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी पर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को सूची से हटाकर करोड़ों रुपए के भुगतान का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने दस्तावेजों के आधार पर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। श्री शाह आज रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
4: झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को 55 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, और अगस्त यानी कि अगले महीने से इनको और पेमेंट देने की तैयारी है। इसमें क्या रूपरेखा, कैसे ये पूरा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, मैं एक एक करके आपके सामने इसका विवरण रखता जाऊंगा।
1: झारखंड में स्वर्ण व्यवसायियों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्री मरांडी ने गोड्डा और गुमला जिले में हाल की लूट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार पर सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि वे प्रतिदिन लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का प्रयास करते रहें और जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि राज्य सरकार के कार्यों के प्रति जनता का भरोसा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर दिया गया है। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है। एक रिपोर्ट।
5: ईपीएफओ की एमनेस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित वेदिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए। कैंपों में गणना प्रपत्र को वितरण, संग्रह और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया। इस अवसर पर उपविकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना दिया। खिलाड़ियों ने राज्य में समानांतर संगठन बनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे चयन प्रक्रिया, मान्यता और खिलाड़ियों के भविष्य पर असर पड़ेगा। थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष वेदांत कौस्तभ ने कहा कि खिलाड़ियों को विवाद नहीं बल्कि बेहतर प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और रोजगार के अवसर चाहिए।
6: जब से थ्रोबॉल झारखंड में आया है तब से लगातार यहाँ के खेल को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। इसी बीच कई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। सेकंड साउथ एशियन चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ। कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लिए और भारत के लिए एक बहुत गर्व का विषय। कुछ दिन पहले एक नए संघ का घोषणा किया गया है, अनुचित है यहाँ के खेल के लिए। तो हमें लगता है कि खेल को और इस खिलाड़ियों को बांटने का एक प्रयास है।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आज जापान कराटे एसोसिएशन झारखंड की ओर से कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन किया गया। शिविर में चाईबासा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 150 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा में हिस्सा लिया। इस मौके पर जेकेए इंडिया के तकनीकी निदेशक सिहान आनंद रत्ना ने खिलाड़ियों को कराटे की उन्नत तकनीकों और आत्मरक्षा के प्रभावी तरीकों की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्र सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के जरिए जागरूकता बढ़ाने पर दिया बल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा, गांव और पंचायतों को मजबूत करना राज्य सरकार का है लक्ष्य, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जारी है कोशिश। प्रदेश भाजपा ने राज्य में चल रहे कौशल विकास मिशन में अनियमितता का लगाया आरोप। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भुगतान का दावा, न्यायिक जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता, विपक्ष पर किया पलटवार। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए शुरू की 6 महीने की माफी योजना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
8: बेटा,
7: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
8: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
7: कहाँ
8: एडमिशन कराने?
9: आता हुआ एक्टिव।
10: आरबीआई कहता है
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: झारखंड राज्य में एसआईआर 2026 कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही गढ़वा जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम को पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय पूरी तरह से गंभीर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्र ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी विस्तृत जानकारी दी।
2: एसआईआर विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया, जो बीएलओ घर घर जाके गणना का काम शुरू करेंगे। इसमें बीएलए 2 जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनसे सहयोग मांगा गया है और हर स्तर पे उनको भी निर्देशित किया गया है कि बीएलओ को सपोर्ट करें ताकि कोई भी मतदाता जो योग्य है मतदाता सूची में एनरोलमेंट से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता जो इस पात्र मतदाता सूची में रहने के लिए पात्रता नहीं रखता है वो इसमें किसी भी कीमत पे जुड़े नहीं। और बीएलए 2 का भी दायित्व है कि अपने वोटर्स को समझाएं कि यथासंभव मदद करें और जल्दी से फॉर्म भर के उनको दिलवाएं।
1: केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित हो रही उत्तर कोयल जलाशय परियोजना में विस्थापित होने वाले आदिवासी परिवारों के विरोध के कारण इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। विशेषकर डूब क्षेत्र में आने वाले शहीद नीलांबर पीताम्बर के गांव चेमो सनिया के विस्थापित होने वाले आदिवासी परिवारों ने मंडल डैम के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंडल डैम का विरोध कर रहे आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा,
3: देश की स्वतंत्रता संग्राम में नीलांबर पीताम्बर का हमारा योगदान है, बिरसा मुंडा हमारा योगदान है, सिद्धू कानू का है। तो अब आप जो है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का वायलेशन करके आप जमीन को जो है कब्जा करना चाहते हैं, उसकी इतिहास की भूमि समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनकी मांग को समर्थन करने के लिए आए हैं। वो कहना चाहते हैं यहाँ की हेमंत सरकार तानाशाही काम कर रही है, रिप्सू में भी जबरन काम करने का काम कर रही है और यहाँ पर कुटकू जलाशय ला करके आदिवासी विस्थापित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारे इतिहास की भूमि रहेगा तो हम आदिवासी कहाँ रहे। इसे मांग करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत जैसा काम न करे, आदिवासियों को बचाने का काम करे।
1: जिला मुख्यालय गढ़वा में पिछले दिन मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में महिला पुरुषों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदान करने वाली नेहा कुमारी नामक महिला ने एक अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
4: खुशी हो रही है, पिछला बार मेरा ब्लड दान हुआ है और बहुत गर्व की बात है कि एक महिला होकर मैं ब्लड दान की हूँ। और हम सभी महिला से बोलती हूँ कि आप लोग भी बहुत गर्व के साथ रक्तदान करें क्योंकि गरीब को बहुत मतलब सहयोग होता है। और सभी महिला को बोलेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें क्योंकि हम लोग के महिला को मतलब कमजोर समझा जाता है लेकिन हम लोग किसी से कमजोर नहीं है।
1: जिले में काफी प्रतीक्षा के बाद जुलाई महीने में मानसून ने दस्तक देकर खेती से निराश हो रहे किसानों में नई उम्मीद जगा दी है। जिले में 5 जुलाई के बाद से रह रह कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश होते ही जिले में चारों ओर भदई फसल और धान के बिचड़े की बुआई शुरू हो चुकी है। मानसून के आगमन के साथ ही किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
0: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:16 हो रहे हैं और प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और श्रोताओं, आइए बढ़ते हैं हमारे पहले गीत की ओर। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस गीत को हमारे किन श्रोताओं ने सुनना चाहा है। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं चांडील हारूडी ग्राम से तुलसीदास महतो, मनोरमा कल्पना महतो, मन महीनी महतो, दीन बंधु बड़ी बाजार चायबासा से मौजम बिहारी, शमीना खानम, जिम्मी बिट्टू, किरण रोशनी, मुस्कान परी और नबीहा। श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाह है तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारीकर, मनोहर ठाकुर, तैमीर बारीकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनिस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार साथी। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजतावा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर जी का भी खत इसी गीत के लिए हमें मिला है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म हमजोली का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म का नाम था हम जोली। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे अगले गीत की फरमाइश हमें किन श्रोताओं ने भेजी है। श्रोताओं, ये खत आया है तुरी टोला चायबासा से। मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी और अर्पिता कुमारी ने हमें यह खत भेजा है। छोटा निमड़ी चायबासा से हमें खत भेजा है बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और ऋतिक कुमार ने। और जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसी गीत की फरमाइश भेजी है बड़ा बाम्बू सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्री सेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्याम देव नायक और सीमा। ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश, अनु वनवाली और सिद्ध कुमारी। इसी गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुल्ढाणा से सुनने की ख्वाहिशमंद है सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। साथ ही रेलवे रोड गंज डुडवारा से हमें इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी ने। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं आनंद फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, अपने रेडियो दोस्त उदय के साथ। तो आइए अब अगला गीत सुनते हैं, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है महुलडिया सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, संतोषी, दीपक संतोष, राहुल, अनु, तनु, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक और किशोर महतो। श्रोताओं, इसी गीत के लिए हमें खत लिखा है ग्राम नारायणपुर आमदा खरसावा प्रखंड से नायडू महतो, क्षेत्र मोहन साहू, कैलाश, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो और तरुण महतो, पंकज कुमार महतो और परिवार के समस्त सदस्यगण इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी के लिए हमें खत लिखा है ग्राम खजूरिया से संजय बिरवा, डेमचौंग पाड़िया, पिंकी पाड़िया, चंपाए बिरवा, बलवीर बिरवा, राधिका गोप, रेलू कैप्टन, श्रीमती रायमुनी बिरवा, राजू बिरवा, प्रेम बिरवा, इनका खत हमें प्राप्त हुआ है। इसी गीत को सुनना चाहा है जमशेदपुर से हंजिदर हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया ने। तो आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में फिल्म सिलसिला का ये गाना।

श्रोताओं, इस गीत के बाद आइए सुनते हैं अगला गीत। ये सुदास की आवाज़ में, फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन। सुनने की ख्वाहिशमंद हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। ग्राम पंचायत बठेना बलकरण, वहाँ जो है श्रोताओं, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटोदर सारा गाँव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृति वर्मा। राज नांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। कुचाई ग्राम इचाहतु से गोलाराम लोपादा लुदरी, सोमनाथ पूर्णिमा, लाल मुनि बिन जना और जो है श्रोताओं समस्त लोपादा परिवार। ग्राम लोसोदिकी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद, जीतू, साइमन और समस्त महतो परिवार। इसी गीत के लिए एक और फरमाइश आई है ग्राम पोंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली, साजिब सोरेन और एनएस महली। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद है। और अब आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बड़ा निमड़ी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार, महुलडिया सोनवा, झारखंड से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनु, तनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, बड़ा बाबू जोडिया से मोइना महतो, डिम्पी महतो, राहुल महतो, महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योतिष ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। श्रोताओं, इसी गीत के लिए एक और खत हमारे पास आया है। गांव हिरण छप्पर, यमुनानगर, हरियाणा से सुनना चाहते हैं जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और साथी। इसी गीत को सुनना चाहा है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अमानुष का ये गीत है।

0: सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपकी पसंद में। और अब आइए सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर अगला गीत सुनने

ख्वाहिशमंद हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। कुचाई बिद्दरी से केपी सेठ सोए, दुर्गामती सरिता, रेशमी राजकुमारी, विशाल, मुन्ना और सनी। ग्राम सूराबेड़ा से बांसी सरदार, कमल सिंह बीरू सरदार और अंशु। नाज मंसिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, बहुरुबीना, वसीम, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमेरा नाज, नवासी सुमेरा नाज, नवासी अभिया नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और शीना शेख। कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुसरत जहाँ नाज, कांति निकेतन, राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। और साथ ही सुनना चाहा है चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मन महिनी, दीन बंधु महतो। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म दोस्ती का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, अगला कार्यक्रम लेकर हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदय का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हमारे कार्यक्रम भी आप लगातार सुन रहे होंगे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं श्रोताओं फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गीत से। आवाज़ें हैं कुमार सानू, अलीशा चिनॉय, सपना अवस्थी और साथियों की। सुनने की ख्वाहिशमंद हैं सरायकेला गांव की तसे, राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप और माहिर गोप। इसी गीत को सुनना चाहा है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। शादुला शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। गांव लोहगढ़ ठाकरांवाला फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदेव सिंह, गुरलाल सिंह, आविराज सिंह, गुरमान सिंह और गुरनूर सिंह। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से सुनने ख्वाहिशमंद हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक, ये खत आया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोता हूँ, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू, अलीशा चुनाया और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में। और अब श्रोता ये सुनते हैं हमारे अगले गीत की फरमाइश। हमें इस गीत के लिए ख़त लिखा है गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी और संतोष आनंद, चक्रधरपुर केनाल रोड नंबर 3 से तेजस प्रधान, विवेक प्रधान, भीष्म प्रधान और सुनीता कुमारी का खत हमें इस गीत के लिए मिला है। और इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, धर्मेंद्र और जितेंद्र, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभणी से सी आर कुलकर्णी, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से सुनने ख्वाहिशमंद हैं अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकारा हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, परी बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, लाडला टुकटुक गवाणकर, और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजताबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म मोहरा का गीत पंकज उधास, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। जी श्रोताओं, ये खत आया है बेरडी से, सुनने के ख्वाहिशमंद है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमणे, वैष्णवी ढोमणे, चंचल ढोमणे, अर्जुन गवणेकर, धीरज सवा शिरे। इसी गीत को सुनना चाहा है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक, भाई एस देहुरी। एटा रोड गंज डुडवारा उत्तर

जैसे बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। मोहल्डिया सोनुआ झारखंड से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनुतनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनुआ झारखंड से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पाणी प्रधान और नीक पाणी प्रधान। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आशा का ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं, उस गीत की फरमाइश हमें भेजी है बठिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिभा तिवारी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांचल राय। अमजोड़ा पुखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप और समस्त जो है परिवार के समस्त सदस्य। मलोट कैंप पंजाब से इस गीत को सुनना चाह है सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल, महावीर जी हाँ और रमेश मिगलानी। तो आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में फिल्म गदर का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी चायवासा से इस समय आप सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा। अगला गीत सुनने की ख्वाहिशमंद है चांडील ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी और दिने जो है दीन बंधु महतो। बड़ा निमडी चायवासा से तुलसी पथेक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। ग्राम पजौनिया, तहसील कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक और आराध्या चंसौलिया। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर, दिनकर विमल और विशाखा कासलेकर। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और

और अब श्रोताओ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन और इस गीत को सुनना चाहा है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, धर्मेंद्र और जितेंद्र कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से सुनने ख्वाहिशमंद ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया, कुचाई बिदरी से केपी सेठ सोए, दुर्गामती सरिता, रश्मि राजकुमारी, विशाल मुन्ना और सनी, ग्राम सुराबेड़ा से बांसी सरदार, कमल सिंह, बीरू सरदार और अंशु, मौलडिया सोनवा से जो है श्रोताओं नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिटू, आयुष, गीतेश, अनुतनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, बड़ा बाम्बू जोडिया से मोइना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो, आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 8:44 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेना ने ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय बैठक को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
4: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य ने सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 2-1 से, जबकि अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि आबनाए हुरमुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाजों की आजादाना आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में जिन 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी उनके जस्ते खाकी को हो ची मिन सिटी लाया गया है। अब इन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के यानिक सिनर और दूसरे दर्जे के लेजेंडर जोरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दिस इज दिल्ली। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। दिस इज आकाशवाणी। In our national program of features, we now bring you a feature titled PG Accommodations, A Home Away from Home.
2: Every year, millions of Indians migrate across states, carrying suitcases packed with dreams. Their first anchor in an unfamiliar city is often a two-word sanctuary, paying guest.
3: Suitcase in the corner, dreams upon the wall, new city light shining.

0: Simple English feature unit and came to you from the Delhi station of Akashwani. Please stay tuned in for our next broadcast that follows shortly.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब पेश है गज़लों का प्रोग्राम महफिल। गज़लों के प्रोग्राम महफिल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चायबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं गज़लों का प्रोग्राम महफिल। और अब आइए सुनते हैं फ़नकार चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गज़लों का प्रोग्राम महफिल, और भाई सुनते हैं अगली गज़ल फ़नकार पंकज उदास की आवाज़ में।

दोस्तों, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में इसी गज़ल के साथ ही हमारा आज का महफिल प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। हमारे इस महफिल प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों का प्रोग्राम महफिल। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। सुरों के रंग कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है घर।

सुरों के रंग कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म प्यासा से, आवाज़ है हेमंत कुमार की।

0: अगला गीत फिल्म अनाड़ी से, आवाज है मुकेश की।
1: सब

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। और अब ये कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रजनीगंधा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल MPTECH ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

10 मिनट हो रहे हैं। हमारी आज की सभा भी यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।